0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुनते हैं सुबह का पहला फ्लैश न्यूज आपसे विधिमा नमस्कार आपको
1: नमस्कार नीतूषा सभी सुनने वालों को नमस्कार मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप एमएमजी लिमिटेड को पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्टर के आवंटन की जांच के सिलसिले में पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिंद को आज एफसीसी में पेश होना है। मॉरिशस के तटीय क्षेत्र बढ़ते दबाव में है क्योंकि 2010 की तटीय प्रबंधन रणनीति कभी लागू नहीं हुई। पर्यावरण विशेषज्ञ फ्रिसिला इराना के अनुसार तटों की सुरक्षा के लिए सभी साझेदारों को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मछुआरों को नाव का नया इंजन खरीदने में मदद के लिए नई योजना शुरू की गई है जिसके तहत 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिलेगा। वैध फिशरमैन कार्ड धारक अपने क्षेत्र के मत्स्य विभाग में आवेदन कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें कार्ड नंबर बैंक डिटेल्स नाव की डिटेल्स कोटेशन और पुराने इंजन के अप्रयोज्य होने का प्रमाण पत्र देना होगा। मॉरिशस में आज शुरू हो रही उच्च शिक्षा संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करना और विश्वविद्यालयों को नई चुनौतियों के अनुकूल बनाना है। उच्च शिक्षा मंत्री कविराज सुकों के अनुसार इसके लिए पाठ्यक्रम को अर्थव्यवस्था की जरूरतों के अनुसार ढालने और विश्वविद्यालयों तथा उद्योग के बीच संबंधों को मजबूत करने की आवश्यकता है। और विदेश में फ्रांस के बोर्डो शहर के समीप भड़की जंगल की आग बुझाने में दमकल विभाग लगातार जुटा हुआ है। इस आपदा के कारण फ्रांस और स्पेन में अब तक 3,30,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है। और अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज सुबह और दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, फिर भी दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे और देश के दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर कभी कभार वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटू पर 13 से 15, अन्य इलाकों पर 17 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हल्की हवा बहेगी, प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी और दक्षिणी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय 6:42 पर और शाम 5:51 पर सूरज ढल जाएगा।
2: RM3 Radio.

0: ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो शख्स तुम में से उनको दोस्त बनाएगा वो भी उन्हीं में शुमार होगा। बेशक अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता।
1: फत

तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है, तुम उनको देखोगे कि वो उनमें दौड़ दौड़ के मिले जाते हैं। कहते हैं कि हमें खौफ है कि कहीं हम पर जमाने की गर्दिश ना आ जाए, सो करीब है कि अल्लाह फतह भेजे या अपने हाथ से कोई और अम्र नाजिल फरमाए। फिर ये अपने दिल की बातों पर जो छुपाया करते थे पेशेमान होकर रह जाएंगे।

मुसलमानों, तुम्हारे दोस्त तो अल्लाह और उसके पैगंबर और वो मोमिन ही है जो नमाज पढ़ते और जकात देते और अल्लाह के आगे झुकते हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर और मोमिनों से दोस्ती करेगा तो वो अल्लाह की जमात में से होगा और अल्लाह की जमात ही गलबा पाने वाली है।

ऐ ईमान वालों, जिन लोगों को तुमसे पहले किताबें दी गई थीं उनको और काफिरों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को हंसी और खेल बना रखा है दोस्त न बनाओ, और मोमिन हो तो अल्लाह ही से डरते रहो।

और जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो तो ये उसे भी हंसी और खेल बनाते हैं, ये इसलिए कि समझ नहीं रखते। कहो कि ऐ अहले किताब, तुम हम में बुराई ही क्या देखते हो सिवाय इसके कि हम अल्लाह पर और जो किताब हम पर नाजिल हुई उस पर और जो किताबें पहले नाजिल हुई उन सब पर ईमान लाए हैं, और ये कि तुम में अक्सर बदकिरदार हैं।

कहो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह के यहां इससे भी बदतर जजा पाने वाले कौन हैं? वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और जिन पर वो गजबनाक हुआ और जिनको उनमें से बंदर और सुअर बना दिया और जिन्होंने शैतान की परस्तिश की, ऐसे लोगों का बुरा ठिकाना है और वो सीधे रास्ते से बहुत दूर हैं।

और यहूद कहते हैं कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, यानी अल्लाह वकील है। इन्हीं के हाथ बांधे जाएं और ऐसा कहने के सबब इन पर लानत हो। असल यह है कि

उसके दोनों हाथ खुले हैं, वो जिस तरह और जितना चाहता है खर्च करता है। और ए नबी, ये किताब जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल हुई, इससे इनमें से अक्सर की शरारत और इनकार और बढ़ेगा, और हमने इनके दरमियान अदावत और दुश्मनी कयामत के दिन तक डाल दी है। जब कभी इन्होंने लड़ाई की आग जलाई, अल्लाह ने उसको बुझा दिया,

और अगर अहले किताब ईमान लाते और परहेजगारी करते तो हम उनसे उनके गुनाह दूर कर देते और उनको नेमत के बागों में दाखिल करते, और अगर वो तौरात और इंजील को और जो और किताबें उनके परवरदिगार की तरफ से उन पर नाजिल हुई उनको कायम करते तो उन पर रिस्क मैं की तरह बरसता कि अपने ऊपर से और पांव के नीचे से खाते। उनमें कुछ लोग मियाना राव हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके आमाल बुरे हैं।

0: जो लोग अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाएं और अमल नेक करें, ख्वाह वो मुसलमान हो या यहूदी या सितारा परस्त या ईसाई, उनको कयामत के दिन न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम। कुरान मजीद एक ऐसी किताब है जिसका देखना भी इबादत है, इसका छूना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, सुनना और सुनाना भी इबादत है, इस पर अमल करना भी इबादत है और इसका हिफ्ज़ करना भी बहुत बड़ी इबादत है। ऐ पाक परवरदिगार, हमें कसरत से तिलावत कुरान पाक की तौफीक अता फरमा।

मोहतरम सामेईन, मुसलमानों का आपस में सलाम करना भी इस्लामी उसूलों में से है, जिससे एक मुसलमान की पहचान होती है। ये बेहतरीन और मुकम्मल दुआया कलमा है। ज़रा इसके माने पर गौर करें। इसका मतलब है कि अल्लाह तुमको हर तरह की सलामती नसीब फरमाए।

हम बात कर रहे हैं सलाम के हवाले से। इस सलाम में छोटों के लिए शफ़क़त और प्यारो मोहब्बत का कलमा भी है और बड़ों के लिए इसमें अदब और एहतराम भी है। सलाम का आगाज़ करना सुन्नत है लेकिन इसका जवाब देना वाजिब है। इस दुआ या कलमे की कसरत करनी चाहिए ताकि हमारे दरमियान मोहब्बत, उख़ुव्वत और क़राबत का एक रूहानी रिश्ता कायम हो जाए।

सलाम की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक कि तुम में आपस में मोहब्बत ना हो जाए। क्या मैं तुम्हें वो तरीक़ा ना बता दूँ जिसके करने से तुम्हारे दरमियान प्यार व मोहब्बत पैदा हो जाए? वो ये है कि सलाम को आपस में खूब फैलाओ।

वसल्लम ने फरमाया वो जो दोनों में से अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब है। मौजूद सामीन, इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आज हमने जो अहदीस समात फरमाई, अल्लाह पाक हमें उन पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

0: 94.6
1: with RJ Sundaram from 7 a.m. to 8 a.m. Dini Sayaranga.

0: नमस्कार, जय श्री हरि भक्तो। मैं हूं आपके साथ पूनम और आप जुड़े हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ, भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों, आज बात करेंगे उन चीज़ों की जो हम रोज़ देखते हैं पर कभी सोचते नहीं, जैसे कि जंगल, जानवर, इंसान, भगवान और देवी देवता। सब आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि एक धागे से। आज उसी धागे को समझेंगे और शुरू करते हैं भक्ति में शक्ति। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
1: RM3 रेडियो।

एक बात बताएं, गणपति बाप्पा के पास हाथी का सिर है और वाहन एक छोटा सा चूहा। सोचो जरा, सबसे बड़ा जानवर सबसे छोटे जानवर पर कैसे सवार हो सकता है? ये तो बेमेल है ना। पर एक संदेश है इसके पीछे, बड़े और छोटे का एक प्यारा सा रिश्ता, वो भी किस चीज का? सम्मान का। बप्पा कहते हैं, छोटे को कभी नजरअंदाज मत करो। भक्तों, इस दुनिया में सबका अपना काम है, चूहे से लेके हाथी तक, इंसान से लेकर पेड़ तक। बप्पा की पूजा करते हो तो उनकी ये बात भी मानो, हर जीव को उसकी जगह मिलनी चाहिए। हर जीव को उसकी जगह उस ईश्वर ने, परमात्मा ने दी है, चाहे वो बीज हो, चाहे मिट्टी का कण हो, और चाहे संसार का कोई भी देवी देवता, चाहे आप और चाहे मैं, सबका यहाँ पर इस संसार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान है। RM3 Radio.

0: भक्तों, महादेव को जरा ध्यान से देखो। गले में सांप, जटाओं में गंगा, माथे पे चंद्रमा, शरीर पर भस्म, साथ में नंदी। यानी नंदी भी, चांद भी, जानवर भी, जहरीला सांप भी, सब महादेव के हैं। जिसे दुनिया ने छोड़ दिया, जिसे कोई नहीं पूछता, महादेव ने उसे अपनाया। भक्तों, महादेव इसलिए सबके देव हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अयोग्य नहीं समझा। बस सिर्फ सबको यही कहते हैं, सबको योग्य मानो। सबकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिकल्पना, कल्पना मैंने की है और सबका साथ। तो
1: RM3 Radio.

0: 11:10 हो चुके हैं भक्तों, और आप जुड़े हुए अपने ही प्रोग्राम के साथ भक्ति में शक्ति। भक्तों, एक बात जो शायद आपने पहले नहीं सोची, देवताओं को कोई दुख नहीं होता, जानवरों को तो बस भूख और नींद की ही फिक्र होती है, लेकिन इंसान को दुख भी है, सपने भी हैं, डरता भी है, प्यार भी करता है, टूटता भी है, फिर से उठता है। यही देखकर महादेव को इंसानों से सबसे ज़्यादा प्यार और मोहब्बत है। जो टूट कर भी उठता है, जो रो कर भी मुस्कुराता है, जो हर बार भगवान को याद करता है, वो इंसान महादेव का सबसे प्यारा भक्त है। भक्तों, आप इंसान हो, यही सबसे बड़ी खासियत है आप में, क्योंकि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिससे महादेव, जिससे शक्ति, वो परमात्मा जो संसार ईश्वर की शक्ति है, वो खुश हो सके। इसलिए आपको सिर्फ इतना ही कहते हैं, अपनी शक्ति में दम रखो, अपनी भक्ति में दम रखो, और उस परमात्मा के साथ जुड़े रहो।
1: RM3 रेडियो।

भक्तों, 11:18 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम के साथ, भक्ति में शक्ति के साथ। भक्तों, आज जब

0: धरती को कहते थे, माफ करना माँ, मैं तुम्हारे ऊपर पैर रखने पड़ेंगे, तुम्हारे ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। भक्तों, माँ धरती सोचो जरा, हमें खाना देती है, पानी देती है, घर देती है, जंगल देती है, जानवरों को जगह देती है, और बदले में कुछ नहीं मांगती, बस मांगती है आप सबका प्यार। माँ धरती की पूजा सिर्फ मंदिर में नहीं होती, जब हम पेड़ लगाते हैं, पानी बचाते हैं, ज़मीन को साफ रखते हैं, तब भी माँ धरती की असली पूजा होती है। और इसीलिए कहते हैं, जहाँ पे भी रहो हमेशा खुश रहो, अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाओ, सुंदर बनाओ। साफ सफाई माँ धरती को भी पसंद है, क्योंकि ये तो उसी की ही धरती है, और ये वो ही साफ होती हैं जैसे हम अपने बच्चों को साफ करते हैं, अपने परिवार को, खुद को साफ करते हैं। इसलिए कहते हैं, प्रेम बांटते रहो और प्रेम के साथ साफ सफाई भी करते रहो, यही है असली भक्ति।
1: RM3 Radio.

भक्तो यही है असली भक्ति में शक्ति। मैं हूँ आपके साथ पूनम और आप जुड़े हैं RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ। अगले सोमवार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और भगवान की भक्ति में दम रखिएगा। जय श्री हरि, जय श्री गणेश।

0: सभी को नमस्कार आप सुनते हैं संक्षिप समाचार विधिमा से विधिमा आपको नमस्कार
1: नमस्कार पूनम सभी सुनने वालों को नमस्कार मॉरिशस में घर बनाना लगातार महंगा होता जा रहा है स्टैटिस्टिक्स मॉरिशस द्वारा 23 जुलाई को जारी किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कंस्ट्रक्शन प्राइस इंडेक्स में एक साल में 6.1% की वृद्धि हुई है इंजीनियर्स काउंसिल के चेयरमैन देवेंदालिया के अनुसार इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण आयातित सामग्रियों की लागत समुद्री माल भाड़े में उछाल और सीमेंट जैसे स्थानीय घटकों की बढ़ती लागत है लेकिन ये बढ़ोतरी हर किसी को एक जैसी प्रभावित नहीं करती है जहां बड़े ठेकेदार अपने अनुबंधों के माध्यम से अपने दाम समायोजित कर सकते हैं वहीं आम लोगों को VAT सहित सभी अतिरिक्त लागतों का बोझ अकेले ही उठाना पड़ता है वैध फिशरमैन कार्ड धारक मछुआरे नाव का नया इंजन खरीदने के लिए 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता और 1,00,000 रुपये तक के लोन हेतु अपने इलाके के मत्स्य विभाग में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं घरेलू छत सुलह योजना की शुरुआत के बाद सीबी ने जनता को सतर्क किया है कि इंटरनेट पर चल रही कुछ पूर्व पंजीकरण और विज्ञापन भ्रामक हैं सीबी ये मांग करता है कि किसी भी अनौपचारिक वेबसाइट या फेसबुक पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें और न ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरें कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए केवल सीबी कार्यालय जाएं और विदेश में सीटल सेंटर में हुई गोलीबारी के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है और 4 अन्य घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं पुलिस का कहना है कि एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है जो मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए थोड़ी देर में शोक समाचार रारोड प्लेंडिरोश में 88 साल की 88 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रेवंती बालकरण पैदाइशी नाम सीताराम और जो चाची नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2:30 बजे उनके घर रारोड प्लेंडिरोश से उठाकर लावांचुया की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2:30 रारोड रिश्मा में कम्युनिटी सेंटर के पास 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रज्जो महादू पैदाइशी नाम रामुद्दीन और जो जामुंती नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे दीपक महादू के घर रारोड रिश्मा से उठाकर मेजिन कौंडमास की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन टूडे एट 2 PM क्लेमेंसिया रोड बेलेरिवियासेश में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कृष्ण कुमारी रामनोरिस पैदाइशी नाम हरकू और जोसोना महाजिन नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी सोमवार 3 अगस्त को उनके बेटे कैलाश रामनोरिस के घर क्लेमेंसिया रोड बेलेरिवियासेश से उठाकर बुशों की शमशान भूमि दी जाएगी क्रिमेशन ऑन मंडे 3rd of August at 11:30. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: खाना सफर खाना सफर।
1: नमस्कार, दिन के 12 बजकर 7 मिनट हुए हैं। मैं हूं विदिता और मैं आई हूं आपका साथ देने के लिए आप ही के प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर। तो सुहाना सफर के जितने भी हम सफर हैं उन सब का हम स्वागत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम में। और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आपका वीकेंड जो है बहुत अच्छी तरह से गुजरा होगा। आप लोग चाहे तो हमें हमारे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं और रेडियो मनोरंजन का टिकटॉक है R3। आपको पता ही है कि यहाँ पर हम सभी एक साथ जुड़े रहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अगर चाहे तो हमें वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड खूबसूरत गीतों के साथ आपकी महफिल को सजाते हैं। मैं विदिता आपके साथ रहूंगी आज शाम 3 बजे तक।
2: You're listening RM Free Radio.

0: मैंने भी आपसे कहा था कि हम मंडे को आएंगे वापस आपका साथ देने के लिए, तो आ गए 12:14 27 जुलाई। ये महीना भी धीरे धीरे करके ख़त्म हो ही रहा है। इससे पहले कि ये एक दो घंटे जो हम आपके साथ रहते हैं ये समय बीत जाए, चलिए कुछ डेडिकेशंस हो जाए।
1: सुहाना सफर।
0: तो नेक्स्ट हमारा जो गाना होगा हम डेडिकेट करेंगे सुनील सिंह के लिए, जो गाना से हमें सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। वैसे तो हम भजन नहीं चलाते प्रोग्राम में, ना ही नए गाने चलाते हैं, बस पुराने गाने होते हैं। सुनील सिंह जी, ये गाना मैं आपको डेडिकेट करूंगी अरीशा की तरफ से साइलेश के लिए। और यही गाना जो होगा हम डेडिकेट करेंगे आपके लिए, आप हैं कैटरबोन से और आपका नाम है वेदना। केविन हाई, हाउ आर यू? मिस्टर राज, थैंक यू सो मच। शेख मज़ाम, आपका भी हम वेलकम करते हैं। और यहाँ पर डीजे दया भी हमारे साथ है। चलिए, आपके भाई रितेश जूरन का आज बर्थडे है, तो उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे हमारी तरफ से, सबकी तरफ से। और साथ ही साथ ये गाना जो है हम डेडिकेट करते हैं फॉर बबीता, फॉर केम राज शिवसन, और साथ में है अनिल राजन कुजन जी, थैंक यू सो मच साथ देने के लिए। और हमारी परी हमारे साथ जुड़ गई है, थैंक यू सो मच। मिस्टर रौद्रमांश हमारे साथ है, लोलिता, रीता हरजन, एंड वी हैव मिस्टर नूरुद्दीन। कैसे हो आप फ्रांस में? सब बढ़िया, सब ठीक, सबको हमारी ओर से बोंजूर। साधना, नीता, सुमन, दीपचंद, दुर्गा, प्रीत, रोशन, मोहन, अलीशा, अलीशा और पूरी फैमिली के लिए गाना होगा। यहाँ पर मोहम्मद फारूक के लिए हम वेलकम करते हैं, नेक्स्ट गाना आपको डेडिकेट करेंगे। अशोक, सुखवंती, धानवी, जानव, जियांशु, आदिया के लिए मिस्टर मुनिसामी, हसन जी, सिरतन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी गाना होगा। और यहाँ पर गाना डेडिकेट करेंगे भावना के लिए और उनके हस्बैंड कमल के नाम जो हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम सिर्फ पुराने गाने चलाते हैं, नए गाने नहीं चलाते, तो क्योंकि फिल्म का गाना हम चला नहीं पाएंगे और ना ही कोई भी नया गाना। ये गाना हम डेडिकेट करते हैं संगीता सुखारी के नाम, जो हमारे साथ टिकटॉक पे जुड़ी हुई है। मंजुला कौले सर, उनकी प्रिंसेस, दो प्रिंसेस है, परी और ईशा, कौन दिमास रहते हैं। मंजुला जी, आपके दोनों बच्चों के लिए गाना होगा। राज सहाय फ्रॉम लंडन, हेलो लंडन वालों, कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: तुम्हें मैं अगर अपना साथी बना लूं, बता दो मुझे मेरा साथ दोगे कहां तक? 3 बजे तक, हम 3 बजे तक साथ हैं, फिर उसके बाद बाकी के प्रोग्राम हैं। और अभी फिलहाल के लिए हमारे साथ कौन है जान लेते हैं। सो वी हैव फारूक फ्रॉम फिजी आइलैंड्स, हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बोला कि मेरे फूफा अफजल के लिए और पूरी फैमिली के लिए गाना डेडिकेट कर दीजिएगा, ज़रूर, क्यों नहीं। साथ में ये गाना हम विष्टि के लिए डेडिकेट करते हैं, उनके हस्बैंड नीलेश, बाबूलाल फैमिली, उनकी सिस्टर आष्टी, साथ में है बेटा अंश, मॉम डैड सबके लिए। वी हैव ऐश, प्रिया प्रसाद, उष्णा बानू, संजय, आदर्श, सुदन हमारे साथ, शैलेश हैं फ्रॉम लाफ्रोगा, वरुणा दुची फ्रॉम मोंटेनेग्रो, हाय गाइस, वेलकम, एंड वी हैव आशा निर्मला फ्रॉम मलेशिया। ओके, तो मलेशिया वालों हमें सुन रहे हो, हमारे साथ जुड़े हो, थैंक यू सो मच। फिजी तो अब हमारा सेकंड होम हो गया है, सबको पता चल गया है। एंड यहाँ पर गाना होगा, हम देव कुमार कालीचंद के नाम डेडिकेट करेंगे। साथ में माधुरी आ गई हैं, हेलो जी, 1 2 3 कैसे हो? यास्मीन, हाय यास्मीन, कैसे हो आप? ओके, एमा, हम आपके लिए गाना डेडिकेट करते हैं। वनकम, जयलक्ष्मी, कैसे हो? तो नेक्स्ट गाना आपके लिए, थैंक यू सो मच। निज़ाम बहादुर, थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरीवन जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एंड गाने की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की फरमाइश आई है, परवीन हमारे साथ है, तो मैंने फरमाइश लेना भी इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि किसी का गाना चलता है, किसी का नहीं चलता, तो सब जो है थोड़े नाराज़ हो जाते, तो मैंने कहा मेरे ही गाने सुनो, कोई बात नहीं। मनीषा, हाय मनीषा, हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू टू माई स्वीटी। एंड चलिए इसी के साथ नेक्स्ट गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम आपके लिए, नाम नहीं लिखा लेकिन कहते हैं ओल्ड इज रियली गोल्ड, विदिता, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पर साहिल हमारे साथ हैं, उनके लिए गाना होगा। हमारे हिमेश जी आ गए हैं साथ देने के लिए, श्वेता, उनकी माँ सीता, देवांश, अभिषेक और इक्वायो से जितने भी लोग सुन रहे हैं, नमस्कार रीता, तैयब भोला स्वागत है, नजीरा वेलकम है, रंभा हमारे साथ हैं, कहते हैं कि नेक्स्ट गाना उनके लिए, और स्विट्जरलैंड में जितने भी लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए उन सब के लिए। जय श्री राम, थैंक यू जी। रेणुका माती, कैसे हो आप? गाना आपके लिए, राणा नागा, और साथ में यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं ओके एसएल ग्लोबल, क्या बात है। तो प्रिंसेस जास्मीन के लिए भी गाना डेडिकेट करते हैं हम, और पीको के नाम।
2: RM3 रेडियो
1: किसी ने कहा कि किशोर दा का कोई गाना चलाए ना, लीजिए किशोर दा का गाना आ गया आपके लिए, आपने अपना नाम तो नहीं लिखा। सुल्ताना कांदाई, नमस्कार, स्वागत है प्रेमिला जी, नमस्कार। शमा बरका, विशाल, चिरंजीत और देवीना के लिए, एंड वी हैव सुरेखा।

कीप स्माइलिंग, तो मैं स्माइल करती रहती हूँ, मैं हैप्पी रहती हूँ। हमारे साथ हैं जैसे मैंने कहा कैनेडा से किरण पुरी, अर्चना डांडा फ्रॉम न्यूजीलैंड, एंड साथ में है हमारे अनुपमा। ये सीरियल वाली तो नहीं होगी अनुपमा, नहीं वो वाली नहीं होगी, आई एम श्योर वो वाली नहीं होगी। अगर वो वाली नहीं है तो गाना कुछ ऐसा होना चाहिए सीधे आपके दिल तक पहुंचे। बाहर का मौसम एकदम खूबसूरत है, खिली खिली धूप है, लेकिन खिली खिली धूप में हमें यहाँ पर अगर बारिश को एंजॉय करना है तो ये गाना फिट रहेगा। उत्तम जी नमस्ते, कैसे हैं आप?

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आस्था से। आस्था, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, 1 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। आज बल्कि कल राष्ट्रीय सभा की बैठक में 2 महत्वपूर्ण विधेयकों पर सबकी नजर रहेगी। इसका उद्देश्य बजट में घोषित कदमों को लागू करना है। अप्रोप्रिएशन बिल के बाद अब फाइनेंस बिल और इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स मिसलेनियस प्रोविजंस बिल पर चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम इन दोनों बिल्स को पेश करने वाले हैं। इसके तहत 80 से अधिक कानूनों में सुधार लाया जाएगा। देश में आलू की फसल की कटाई शुरू हो गई है। हर साल मौसम के अनुसार स्थानीय उत्पादन लगभग 13,000 से 16,000 टन के बीच रहता है। मॉरिशस में सबसे अधिक उगाई और खाई जाने वाली किस्म स्पुंता है। स्थानीय उत्पादन से देश की लगभग 60% जरूरत पूरी होती है। देश के पूर्वी हिस्से के क्वीन विक्टोरिया में एक नया स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं और करीब पहुंचाना है। इससे खासतौर पर बुजुर्गों को फायदा होगा जिन्हें अब सामान्य इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। मॉरिशस में हर 5 में से केवल एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म के बाद पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाती है। ये आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिश से काफी कम है। काम पर लौटने जैसी वजहों से कई माताओं को स्तनपान जारी रखने में कठिनाई होती है। फिर भी कई माताएं अपने बच्चों को माँ के दूध का लाभ देने के लिए प्रयास करती रहती हैं। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव के बीच मैंग्रोव्स वनों का संरक्षण पहले से अधिक जरूरी हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव्स दिवस के अवसर पर ग्रीन पीस अफ्रीका स्थानीय निवासियों और स्वयंसेवकों ने रिविएरा दे क्रियोल में सफाई और जागरूकता अभियान चलाया। इसका उद्देश्य लोगों को मैंग्रोव्स वनों के महत्व के बारे में जागरूक कराना था। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष रुकने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% की गिरावट। 2 सप्ताह तक चले तनाव के बीच दोनों देशों ने युद्ध विराम की घोषणा की है। इसका असर एशियाई बाजार में भी दिखाई दिया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत में तेज गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। तुलसी लेन यूनियन पार्क में 46 years old के श्री कविराज तुलसी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें विक्रम के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी कल मंगलवार 28 जुलाई को दिन के 1:30 बजे उनकी माता सुकवंती तुलसी के मकान यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोज बेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। रॉयल रोड रिशमॉ में कम्युनिटी सेंटर के पास 75 years old की राजू महादेव की मृत्यु हो गई है। पैदाइश नाम रामुद्दीन, लोग उन्हें जमुनते के नाम से अधिक जानती थी। उनकी अर्थी आज दोपहर बाद 2 बजे उनके बेटे दीपक महादेव के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौतुमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
2: On NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You're listening to RM3 Radio. Money.

साथ आगे बढ़ते हैं. डेडिकेशंस बहुत सारे आए हैं एंड गाना जो होगा वो होगा शवि के लिए, फरमोजो, अनसुया, अजय, तस्नीन, उस्ना, उनकी पूरी फैमिली जो कास्टल रहते हैं उनके लिए गाना मांग रहे हैं. वहीं पे कैलाश, समूता, ललिता, लीना.

0: मोहिनी दीनू कविता दिव्य दयाल टाइगर ओके उनके लिए गाना होगा मीरेला कैसी हो मेरी जान सागर के लिए एंड वी हैव विशाद अली बुकस प्रतिमा दुखित राम प्रीति अलीशा कृष्ण उनकी मम बसंती और दुखित राम सैमसन फैमिली के लिए गाना मांग रहे हैं उर्मिला देवी और लामोचा पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले हमारे सारी फ्रेंड्स के लिए गाना होगा रेशमा राम की सुन उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है तो उनके हस्बैंड के लिए उनके बेटियों की तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार विश्वानी मीला रामा आयशा साथ में आसिया अनुराधा येशा धनुक्षण रुसीता दर्शन बिंदा गीता राम नारायण सीमी शर्मा कहती है वहाँ क्या गाना है गाने ऐसे होते हैं मेरे दोस्त ओके सो सबीना कह रही है शिवम आयन विहांज और श्रीना के लिए गाना होगा नीलम ललिता फिरजू कविता नर्मदा उनकी ग्रांड डॉटर नबीहा की वेडिंग है उनके लिए उन्होंने गाना मांगा है और वहीं भी बबीता गुदोही हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजय यादव भी हमारे साथ हैं हाय एमबी कैसे हो आप सलोनी दोहा जी और यहाँ पर गाना डेडिकेट करते हैं हम देवी के नाम साथ दे रही इस समय हमारे और बाकी वैद्य ही हमें हमारे साथ जुड़ चुकी है तो आइए रवि साहब की आवाज़ में गाना हो जाए
1: तुझे देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने बस इतनी खता है मेरी और खता क्या

0: तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा मैंने, इतनी सो खता है और खता क्या आप बताएंगे।
1: सुहाना सफर
0: और ये गाने ने लगता है सबका दिल जीत लिया ही ना हमारे साथ है। कहते हैं कि आपके गाने इतने लाइक मेमोरेबल गाने आप चलाती हैं। आज मेरी 30th वेडिंग एनिवर्सरी, अगर हो सके तो कोई गाना मेरे लिए भी। चलो ठीक है कैलाश जी, आपके लिए भी। एंड गाना होगा साधना जगदोयाल के नाम। मरियम हमारे साथ और देवानंद की फैन है, उनका भी गाना आएगा। अभी रुको, अभी मेरे पास सारे गाने हैं। रागिनी जी नमस्ते, कैसे हो आप? और साथ में यहाँ पर गाना जाएगा सावित्री मौर्य के नाम। और कौन है हमारे साथ? वॉचिंग यू लाइव फ्रॉम वैंकूवर। अच्छा, वैंकूवर से एक और हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी कहा कि अभी वो सोए नहीं हैं, वो जागे हुए हैं। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं और दूर दूर से जुड़े हुए हैं, दुनिया के कोने कोने से निकल कर जुड़े हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे जो दोस्त होते हैं वो सिर्फ मॉरिशस में रहकर पूरी दुनिया से निकल कर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो मेरे ख्याल से किरण पुरी जी जो है वो भी वैंकूवर में है, शायद आप उनको भी जानते होंगे। ऐसा करते हैं, गाना होगा आपके लिए। एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं नवीन फ्रॉम एम्स्टरडैम। हाय नवीन, एम्स्टरडैम कभी विजिट क्या करेंगे एक दिन। कैलाश जी थैंक यू सो मच वंस अगेन। चाची ललिता, आओ ललिता यानी बेबी के नाम, साथ में स्मिता आसनाल से जितने भी आपके दोस्त काम करो उन सबके लिए गाना होगा। शांता वाइतलिंगम, सुमति और गोपी, गोपी ने कहा गाना चला दो, मैंने कहा नए गाने नहीं चलाते, सिर्फ पुराने गाने चलते हैं। तो ऐसा करते हैं अगला गाना हम अपनी प्रिंसेस के नाम, इकरम के नाम और साथ में हमारी डीवा गर्ल के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़ी हैं। बबीता जी थैंक यू सो मच, आपके मामू मामी और मांतिस राम रतन के लिए जो फौजी साहब रहते हैं उनके लिए डेडिकेट करेंगे। और साथ में अमृता कहती हैं अरुणा और उमा के लिए भी इस समय वो हमारे साथ जुड़े हैं।
2: RL3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: इस समय आप सुहाना सफर प्रोग्राम सुन रहे हैं वेदिता के साथ रेडियो मनोरंजन RM3 पर। और यहाँ पर कमाल की बात ये है कि दुनिया के कोने कोने से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और किरण पुरी जो कि कनाडा में, कहते कि आज तो अलगता है, आप हमें सोने ही नहीं देंगे। मैं नहीं बल्कि हमारे गाने आपको सोने नहीं देंगे। लेकिन थैंक यू सो मच है हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप। अगला गाना जो होगा हम डेडिकेट करते हैं आपके लिए बबीता बंधु जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, उनकी बहू के लिए राधिका नरकुसुकलाल, राम जतन श्यामा। और नेक्स्ट गाना

नशरीन की तरफ से उनके हबीब फिरोज वजीर के लिए सावित्री सिंह नेदरलैंड से जुड़ी हुई हैं वेलकम करती हूं आपका रामगति श्यामा नीन कहती हूं कि अभी मैं काम कर रही हूं लेकिन मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है तो आपके मम्मी को कहेंगे प्लीज गेट वेल सून आप जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल को छोड़कर अपने घर वापस जाओ एकदम तंदुरुस्त ठीक है और यहाँ पर आरती वर्षा हमारे साथ कहती हैं कि नेक्स्ट गाना थोड़ी फैमिली के लिए आप डेडिकेट कर देना आयशा सिद्दीकी हमारे साथ हैं और ये गाना आपके लिए होगा और बाकी जितने भी दोस्त हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब सोच रहे हैं कि भाई ये लड़की एक के बाद एक ऐसे गाने चला रही है ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या सोच कर बम फोड़े जा रही है हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होगा अब आए हैं तो कुछ तो करेंगे ना कमाल तो नेक्स्ट गाना जो होगा वो डेडिकेट करते हैं आपके लिए दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: एक के बाद एक हिट गाने आपके लिए लेकर आए हैं आपके अपने रेडियो मनोरंजन RN3 पर। और गाने को सुनकर सब यही कह रहे हैं कि भाई गाने हुआ करते थे हमारे जमाने में। अब वैसे आज के भी हमारे यंगस्टर्स इन गीतों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, पता है आपको। चलिए कोई बात नहीं, दीप्ति जी कहते हैं आई एम कुकिंग एंड लिसनिंग, और साथ में हमारा टिकटॉक भी चल रहा है। ऑलराइट, विशाल ननकू नहीं विशाल किनू हमारे साथ जुड़े हैं। एंड किरण पुरी कहते हैं लिसनिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आपने अभी से हमारा दिल जीत लिया। आगे आगे देखो होता है क्या, बस आप हमारे साथ रहिएगा, सोएगा नहीं बाद में सो जाएगा। नेक्स्ट गाना फॉर माई हस्बैंड दार, और ये है फ्रॉम माया। अरे माया, चलो जी, तो माया जी के लिए गाना होगा। और सुरेखा जी कहते हैं मैं बहुत जल्द मॉरिशस आने वाली हूँ, थैंक यू सो मच, आप हमसे मिलने ज़रूर आइएगा। ठीक है, राजेश खन्ना के जितने भी फैंस हैं उनके लिए गाना था, आप लोगों ने पसंद किया होगा। तो यहाँ पर वर्षा कहती हैं कि भाई इन गीतों को सुन सुनकर घर का काम करने में जो मज़ा आ रहा है ना, आप बता नहीं सकते। तो चलो आप ऐसा करो, नेक्स्ट गाने के साथ थोड़ा डांस भी करना शुरू कर दो। अभी बबीता बुलाकी, बिल, रेखा गोपाल, संजय बुधवा, ललिता चरण, रूबी, पूर्णिमा, सलीमा और प्रतिमा गंगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इन सब के साथ शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है।

लोग हैं जिन्होंने इस गाने को अपने टाइम पे जिया होगा, जब प्यार हुआ होगा, किसी से नजरें मिली होगी तो दिल ने कहा होगा ना कि चलो शादी करते हैं, तो इस गाने को कितनी बार सुना होगा आपने। वैसे ये गाना मॉरिशस में शूट किया गया था। गर्मा गर्म चाय के साथ एंजॉय करें, मस्त रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो मनोरंजन।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: ये है सुहाना सफर और आज हम 3 बजे तक आपके साथ हैं RM3 रेडियो मनोरंजन वेदिता के साथ प्रोग्राम आप सुन रहे हैं अनिल जी चांद राज हमारे साथ हैं कहते हैं कि आप वाचिंग दिस वंडरफुल ब्रॉडकास्ट और हम फिजी आइलैंड से हैं जी हाँ फिजी आइलैंड से बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े रहते हैं रबड़ी जी हम रबड़ी की बात कर रहे थे चलो तो ठीक है यहाँ पर हम जलेबी और रबड़ी की बात कर रहे थे तो याद आ गया और चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और गाना जो होगा डेडिकेट करते हैं हम अपने इन तमाम दोस्तों के लिए बबीता जी कैसी हो आप सब बढ़िया सब ठीक साथ देने के लिए थैंक यू सो मच और नेक्स्ट गाना आपने बोला क्या होगा

0: मुझे देखा होकर मेहरबान ये है तीसरी मंजिल फिल्म का गान गाना तो फिर यहाँ पर संजू बेबू और विमला अपाडू के लिए पेश है अगला गाना
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan
0: दया हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए गाना होगा और साथ में ये गाना जाएगा आपके लिए जो लोग इस समय हमारे साथ हैं और ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी में सुन रहे हैं घर पे हैं काम पे हैं जहाँ से भी सुन रहे हैं उनके लिए डेडिकेट करते हैं ये प्यारा सा गाना फिल्म आपको पता ही है चलो जी लता जी की आवाज़ में अपना साथ दे रहे हैं सुरेश वाडकर

चलिए अगले गाने के साथ बढ़ते हैं। अब हम समाचारों की ओर जो आप सुनेंगे 2 बजे। याद रखिए हमारा सुहाना सफर 2 बजे के बाद भी जारी रहेगा। प्रेमिला संजय ओमी का हम स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हैं हम प्रिया का हमारे प्रोग्राम में।

0: दो बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। 30 बिलियन रुपए के इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन जांच कर रही है। आयोग ये जानने की कोशिश कर रहा है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, जबकि शुरुआत में कंपनी 7 बोली लगाने वाली कंपनियों में शामिल नहीं थी। जांच अधिकारी उस समय के राजनीतिक नेताओं और MMG के अधिकारियों के बीच हुई बैठकों को और उसकी पूरी प्रक्रिया की भी जाँच कर रही है। बदलती दुनिया की जरूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इसी सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आज आयोजित की जा रही है। इनमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा सेक्टर के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज सुबह रेजुई स्थित उक्तावी ऑडिटोरियम में हुआ। क्या मध्यपुर में बढ़ता तनाव अब कम होने की ओर बढ़ रहा है? लगातार 2 दिनों से अमेरिका ने ईरान पर हमले रोक रखे हैं, जबकि ईरान ने भी फिलहाल अपने जवाबी हमले रोकने की बात कही है। इस बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हैं और होर्मुज जलमार्ग को लेकर बातचीत जारी है। इसी बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को व्हाइट हाउस में इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाली है। कोंगो गणराज्य के पूर्वी हिस्से में IDF उग्रवादी समूह के हमले में 20 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय नागरिक संगठनों के अनुसार इस क्षेत्र में हिंसा लगातार बढ़ रही है, उनका मानना है। इस बीच इलाके में एबोला का प्रकोप भी फैल चुका है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में मोशन मुक्केबाजों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। जिग्यागत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, वहीं मारी मारिन गब्रियल ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। हालांकि फाब्रिस वाली का सफर भी प्री क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया। और अब बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। शमला सूस कटरबोन में 81 इयर्स ओल्ड के लुमान सिंह उबिलक की मृत्यु हो गई है। लुमान सिंह उबिलक की मृत्यु हो गई है, लोग उन्हें भूप के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे उबिलक उत्तम सिंह के मकान का ट्रिब्यून से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 नून। रॉयल रोड क्रेव क्यूर में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड के श्री चंदर कालीचरण की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें लाला के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे यशराज कालीचरण के मकान क्रेव क्यूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके ही की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: On NBC Play, NBC Radio.tv. You're listening to RM3 Radio.

भाई किसके दिल में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि प्रेमिला और संजय वो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खूबसूरत गीतों का ये सिलसिला आज रेडियो मनोरंजन 93.3 पर सुहाना सफर जारी रहेगा 3 बजे तक।

0: आशा भोसले अमित कुमार आपके लिए, फिल्म का नाम है लव इन गोवा और दिन के 2:11 हुए हैं। थैंक यू सो मच आप हमारे साथ जुड़े हैं। लीना का वेलकम करते हैं हमारे इस प्रोग्राम में जो साथ दे रही है हमारे, और साथ ही साथ यहाँ पर बाकी जितने भी दोस्त हैं। मिसेस किरण सिंह कहती हैं कि आज मेरा बर्थडे है तो आपको हमारी ओर से हैप्पी हैप्पी हैप्पी बर्थडे। विक महाराज आपका भी हम वेलकम करते हैं और दीपची भी अभी भी हमारे साथ हैं, तो चलिए उनके लिए हम डेडिकेट करते हैं प्रोग्राम का ये गाना।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: दिल था अकेला अकेला और साथी मिला अलबेला, और ऐसे में खूबसूरत गीतों का ये हसीन सफर यहाँ पर हम जारी रखेंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे वो किसके नाम होगा, वो हाँ लीना के लिए और लीना की मॉम के लिए, जिस समय हमारे साथ जुड़ी हैं वी हैव रामा और रेखा जी हमारे साथ, उनकी बेटी कृषिका के लिए, और ऐश जो हमारे साथ हमारे गीतों को इन्जॉय करी, और दीप्ति जी आपके नाम। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ भी होंगे तुझे याद करेंगे। आप भी भूलना नहीं, रेडियो मनोरंजन पर ये है आपका प्रोग्राम सुहाना सफर वेदिता के साथ।

जर्मनी और चलिए यहां पर अतवल महिंदर जर्मनी से साथ दे रहे हैं एंड साथ ही साथ यहां पर जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं कतिबा मंगर एंड अनुराग अभी पोर्ट लुइस में हैं अभी उनकी मिठाई की सेलिंग कर रहे हैं तो चलिए उनके लिए भी हम डेडिकेट करते हैं प्रोग्राम का हमारा ये खूबसूरत सा गाना एंड आई गेस कि इस गाने को सुनने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई थोड़ा हमें एनर्जी तो मिल गया काम करने के लिए ज़रूरी होता है एनर्जी काम करने के लिए और कुछ एनर्जीज तो गाने के साथ ही आते हैं चलिए इसी के साथ हम आयशा का वेलकम करते हैं जो इस समय हमारे साथ हैं छुट्टियां चल रही बच्चे की

चलिए विक्स हाउस अफ्रीका से साथ दे रही है और यहाँ पर अनुष हमारे साथ है, वेलकम। और हमें यहाँ पर सुन रहे हैं फ्रॉम

0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। सोनम हमारे साथ लंदन यूके से सुन रही हैं, कहती हैं कि सोनम और सुनीता के लिए अगर कोई गाना हो तो प्लीज़ डेडिकेट कर दीजिएगा। आरती की तरफ से ये गाना साजीव के लिए और राज के नाम जो साथ दे रही हैं। अनोर की हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और साथ में यहाँ पर और भी कई सारे दोस्त हैं, जैसे दीपक टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अमीर असगर आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपका हम वेलकम करते हैं। वेलकम टू वेदना, साथ दे रही हैं आरती और नेक्स्ट गाना हम आपके भाई के नाम डेडिकेट करेंगे अनिल सुदेश और सुभिराज के लिए। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच इंदिरा जी। चलिए नेक्स्ट गाना हम आपके नाम भी डेडिकेट करते हैं।
1: You're listening RM Free Radio, Radio, Radio.
0: चलिए गाना राजेश उगर और प्रकाश के लिए जो साथ दे रहे हैं।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: हमारे श्रोता यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि उनको रफी साहब की आवाज में कोई गाना सुनना है, तो पेश है आपके लिए सूरज फिल्म का ये प्यारा सा गाना। ये गाना हम वैदेही के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जिससे वो हमारे साथ हैं, और साथ में मनवीर, हेलो आपके लिए भी।

0: گستاخی ما گستاخی ما.
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: चलिए कार्यक्रम का हमारा अगला गाना गिरवर के नाम डेडिकेट करते हैं और साथ ही साथ ये गाना जाएगा फरलीना जो साथ दे रही हैं और परी जो अभी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी. कहां से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दुनिया के किस कोने में हैं, प्लीज लेट मी नो.

0: चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हमारे जाने का टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच साथ देने के लिए. हम ये गाना शर्मीली अमिता हराधन और नाइमा देवी बुधन के नाम डेडिकेट करते हैं. साथ में हमारे अभी भी कई सारे लोग जुड़े हैं और दानी हमारे साथ हैं, उनके लिए गाना होगा. एंड वी हैव खबन बोहरा, कैसे हो जी? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. जाने का टाइम और इसी के साथ जंगवा फैमिली के लिए पेश है ये गाना.
1: RL3 Radio, Radio, Radio.
0: राज कहते हैं नाचुका और मस्त रहो, मैं तो गुनगुनाते जाओ. ऐसे गुनगुनाते हुए अब हम आएंगे वेडनेसडे को, भूलिएगा नहीं, 12 से 2 बजे के बीच. राधा सिपचान जाते जाते आ गई, कहती मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए आपके लिए गाना. तो चलिए मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं. बाय, लव यू, टेक केयर.

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है टीना, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। बदलती दुनिया की जरूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इस सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज रेजवी स्थित ओक्टावियो स्टूडियो

0: चूड़ियों में किया गया। और मॉरिशस में हर पांच में से केवल एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म के बाद पहले छः महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाती है। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिश से काफ़ी कम है। काम पर लौटने जैसी वजहों से कई माताओं को स्तनपान जारी रखने में कठिनाई होती है, फिर भी कई माताएं अपने बच्चों को मां के दूध का लाभ देने के लिए प्रयास करती रहती है। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। और देश के पूर्वी क्षेत्र में क्वीन विक्टोरिया में एक नया स्वास्थ्य केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं और करीब पहुंचाना है। इससे खास तौर पर बुजुर्गों को फायदा होगा, जिन्हें अब सामान्य इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। 23वीं कॉमनवेल्थ गेम्स में वर्षन मुक्केबाजों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। जिगी अगात क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, वहीं मारिन गैब्रियल ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। हालांकि फैब्रिस वालेरी का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया। और विदेश में क्या मध्यपुर में बढ़ता तनाव अब कम होने की ओर बढ़ रहा है। लगातार दो दिनों से अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले रोक रखे हैं, जबकि ईरान ने भी फिलहाल अपने जवाबी हमले रोकने की बात कही है। इस बीच कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बातचीत जारी है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रेबुशे में नब्बे साल के 19 ईयर्स ओल्ड के श्री हरि प्रसाद चमन जो पौसाद नाम से ज़रा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई। उनके अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो उनकी अर्थी वैसे कल दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पेरेंस ट्रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2:30 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.

0: सबको के प्रणाम नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में सबके स्वागत अभिवादन हमनी कर जा और हमेशा नियन हमनी बात करी ला जा, चाहे वो लाइफ स्टॉक के बारे में हो, चाहे वो खेती बाड़ी के बारे में हो। तो आज हमनी के दुगो मेहमान आल हवन जा फागेदाने से, दुगो एक्सटेंशन ऑफिसर्स। आप हव श्रीमान रेखानंद विदेशी और श्रीमती गायत्री देवी जालिम बिसेसा। और हमने जब भी बात करी ला जा, जब उत्पादन की बात करी ला जा, प्रोजुक्शों की बात करी ला जा, हाँ दूध बातें, दूध कहाँ से आवेला? गाय से आवेला। गाय के पालन पोषण ओकर उत्पादन होला, मुर्गी बकरी ई सब। पर आज जो थीम जो टॉपिक पर हमने जस्ती बतियाब जा ऊ है डक एंड क्वेल प्रोडक्शन। चला एकर पर जस्ती जानकारी पाए खातिर हमने के दोनों मेहमान के स्वागत बाटे। आप दोनों के प्रणाम। श्रीमती गायत्री जी, तनी सुन हमनी के जब बात करत है जब बतक और बटेर क्वेल और डक, एकर जो मात्रा बा जो कौन स्केल में ई ज्यादा जो बातें जस्ती प्रचलित बातें मॉरिशस में?
1: तो डक और क्वेल प्रोडक्शन स्मॉल स्केल पर पशुपालक पालते हैं। क्वेल उत्पादन में लगभग 20 पशुपालक है और इसमें 2 कमर्शियल फार्म्स सहित है, जहाँ पर लगभग 600 क्वेल्स के फार्मिंग होती है। अब डक को लेंगे तो बटक 341 ब्रीडर्स है और लगभग 7,600 बर्ड्स पालते हैं।
0: अच्छा, आप बोल रहे थे जो मुर्गी न तुन गाय ओकर से तनी सुन न कमती हुए बा, पर हाँ बातें जितना जुन अभी शिफ उस सब बतावत हुआ काफ़ी बड़ी मात्रा में बातें।
1: हाँ, तो अब देखेंगे कि क्यों क्वेल के प्रोडक्शन करते हैं
0: जी।
1: इसमें बहुत से लाभ है, जैसे ये छोटे होने से आसानी से संभाल सकते हैं, ज़्यादा जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। यहाँ चिड़िया दोनों मांस के लिए भी और अंडे के लिए भी पाला जाता है। इनके अंडे स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत से लाभ होती है, यानी के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स। अब मैं क्वेल के अंडे पर बात करूँगी तो इसमें ज़्यादा विटामिन B1, B2, विटामिन A है और मिनरल्स

0: जैसे कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम भी है।
1: अच्छा, जब आप क्वेल की बात कर रही है श्रीमती गायत्री जी, तो हमने जानी ला जाए क्वेल जो बात है वो मुर्गी से तनी सुन छोटा बात है,
0: बहुत साइज में है। हाँ, बहुत साइज में
1: है। और हमने हयो सुननी जा कि उकर जो अंडा बात है उकर जो नाशिया वो बात है वो मुर्गी से जस्ती अच्छा बात है, स्वादिष्ट बात है।
0: हाँ, तो क्वेल के मांस भी खाते हैं और अंडे भी, और अंडे जैसे मैंने कहा बहुत से लोग जो बीमार है, जो जिसको आस्थमा के प्रॉब्लम्स होती है, वे ज़्यादातर क्वेल के अंडे खाते हैं।
1: अच्छा, हाँ। आप हमें बता रही थी कि काफ़ी ज़्यादा बात मात्रा में तो नहीं, लेकिन हाँ मॉरिशस में कहाँ कहाँ पर हमने जब क्वेल के प्रोडक्शन हुआ था, उत्पादन हुआ था, कहाँ कहाँ पर ही होला?
0: जैसे मैंने बताया 2 कमर्शियल फार्म्स है, एक खुशबुआ में और एक सालासी में, नहीं तो हर जगह थोड़े मात्रा में उसका उत्पादन होती है।
1: अच्छा, अरे अभी तोहर से हमने बत्याब जा, अब क्या है कि क्वेल के संगे संगे हमने बटक पर भी बत्याब जा, और वो हमने संगे हवन श्रीमान रेखानंद विदेशी जी, तो हमने के बता हुआ जो डक रेयरिंग बातें हमने के बतक, सबसे पहले मॉरिशस में कौन कौन वायते के जो डक बतक के प्रोडक्शन होला, उत्पादन होला?
2: अच्छा, तो अगर मॉरिशस में देखे तो दो तरह की ब्रीड होते हैं
1: जी।
2: पहला होते हैं पीके और दूसरा मानी, जो हम मस्कोवी डक कहते हैं। तो बतख बहुत लोग उसे रेयरिंग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत हार्डी होती है, यानी उनमें बीमारियों से लड़ने की ताकत ज़्यादा होती है।
1: अच्छा,
2: इनके लिए कोई कॉम्प्लेक्स वैक्सीनेशन प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती, जिससे आपका पैसा और मेहनत दोनों बचती हैं। इनकी मोर्टालिटी रेट कम होती हैं, ये हमारे ट्रॉपिकल वेदर के बिल्कुल अनुकूल हैं और ये खुद अपना खाना ढूंढने में बहुत अच्छी हैं। अगर आप इनको बाहर खुले एरिया में छोड़ेंगे तो ये आसानी से घास फूस और कीड़े मकोड़े खा लेती हैं। ये दोनों ब्रीड अच्छी तरह से अडॉप्ट करती हैं,
1: यानी कि अपने आप ये लोग अपना खाना ढूंढते रहते हैं। हमने देख लीजा मॉरिशस में जस्टी, हमने देख लीजा जो बटक सब बातें नदी में, कभो कभो बाहर जब हमने देखा सा टीवी पर, फिल्मों में हमने देखा सा, पर मॉरिशस में हमने देख लीजा जो बटक के जन काफ़ी जन हवन जा, वो लोग काफ़ी लोग बोले लन जा गंदा पानी में रह लन सा, मठ मिलाएगी लाभू में रह लन सा, ये कितना सच बा कितना छोटा?
2: अगर देखें तो ये तो वाटरफॉल्स कहते हैं
1: जी,
2: यानी वो वाटर को बहुत पसंद करते हैं
1: जी।
2: अगर आप इन्हें रेयरिंग करना चाहिए तो पंड, वाटर पंड का इस्तेमाल ज़रूरी है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि वो पानी पीना बहुत अवश्य है और ये उनके सर उसे डूबना चाहिए, उनकी आंख को वॉश करना चाहिए,
1: यानी कि पानी जो है बहुत ही ज़रूरी है बटक के लिए।
2: जी हाँ।
1: अच्छा, तो इनके एडवांटेजेस क्या है?
2: अच्छा, तो अगर हम देखें तो ये इनके एडवांटेज तो ये बहुत रैपिड ग्रोथ रेट का होता है, और वो देखें तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि उनका कोई कॉम्प्लेक्स वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी नहीं है। अगर आप ब्रॉयलर यानी मुर्गी को देखते हैं तो उनको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप डक को लेंगे तो कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं है क्योंकि वो तो बहुत स्ट्रांग होती है, और इनकी मोर्टालिटी भी रेट कम होती है, और ये हमारे ट्रॉपिकल वेदर के बिल्कुल अडाप्ट कर लेते हैं, तो आप उसे आसानी से बाहर भी रेयर कर सकते हैं। एक कशत ज़रूरी है, लेकिन बाहर भी वो घूमना पसंद करती हैं।
1: अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा श्रीमान विदेशी जी कि वो लोग के चाहेला एगो पानी बहुत ही ज़रूरी बात है वो लोग खातिर, तो वो लोग के घर बनाए खातिर जैसे पुलाइए बातें, जैसे गौशाला वो सब बातें, वो लोग खातिर कैसन लोग जो हाउसिंग बातें वो लोग के कैसे चाहेला हो के?
2: अच्छा, तो अगर हम हाउसिंग देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये उन्हें आवारा कुत्तों, चूहों और पशियों जैसे शिकारियों से बचाने हैं, और साथ ही तेज़ बारिश और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी। बतख का शेड कम से कम वो तो 3 मीटर ऊंचा और छायादार होना चाहिए। आपको मांस वाली

0: बतकों और ब्रीडिंग स्टॉक यानी अंडों को देने वाले को अलग अलग रखना होगा। शेड के अंदर डेंसिटी 3 बतकों पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। साथ ही अंदर की जमीन पर लगभग 10 सेंटीमीटर गहरी वुड शेविंग की बेडिंग बिछानी चाहिए ताकि उन्हें आराम मिले और अंडे टूटने से बचे। आपको एक आउटडोर रन जैसे मैंने कहा खुला एरिया चाहिए जो वायर मेश लोहे की जाली से घिरा हो जहां डेंसिटी 1 डक पर स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। इस रन के अंदर आपको एक पानी का चैनल जैसे मैंने कहा एक वाटर पॉन्ड बनाना होगा जो 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर गहरा हो। पानी का लेवल इतना होना चाहिए कि बतख अपना पूरा सैर उसमें डुबो सके। सैर डुबाने से उनकी आंखों के पास परी नहीं जमती और उनके नाक का रास्ता साफ रहता है। और एक सबसे ज़रूरी टिप हमेशा उनका खाना यानी फीड शेड के अंदर रखें और पानी हमेशा बाहर रन में रखें। इसे बतख अंदर की बेडिंग को गीला और गंदा न कर पाएंगे।
1: यानी कि जो बतख होते हैं जो डक्स होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, सुरक्षित रखना बहुत ही ज़रूरी है जो बाकी बाहर की जो जानवर वगैरह हैं।
0: Exactly.
1: जी तो गायत्री जी आप हमने के बताओ हमने बात हाउसिंग के करत है जहाँ भी क्वेल के बारे में क्वेल उन लोग कहाँ रहे लंजा खुला मैदान कैसे
2: क्वेल को भी हाउसिंग चाहिए
1: जी
2: उनको हम दो तरीके से पाल सकते हैं। एक डीप लीटर सिस्टम जहाँ पर जमीन पर ज़मीन के ऊपर वुड शेविंग्स यानी कि लकड़ी के छिलके उस पर बिछाते हैं और उसी पर रियरिंग करते हैं। सेकंड है बैटरी केज सिस्टम जो वायर मेश से बनती है और ज़मीन से 1 मीटर ऊपर होती है और अगर हम 25 क्वेल्स को रखना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसा बैटरी केज चाहिए जो 1.5 मीटर लॉन्ग हो 60 सेंटीमीटर वाइड और 45 सेंटीमीटर हाइट हो और ऐसे देखेंगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेती और ये एक बैकयार्ड फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा है
1: सूटेबल है। तो जैसे पुराई होला आजकल हमने देखी लाजा सब निमन से ढाकल गल बाटी निमन से एगो हाउसिंग लोग के बाटी तक क्वेल के भी ऐसे बाटे।
2: हाँ तो बैटरी केज हम एक जो मियर है मिहाई उसके दीवार इसके
1: सामने
2: हम रख सकते हैं लेकिन बैटरी केज को हवा से रेन से उससे बचाना चाहिए।
1: जी हाँ चला हमने संगे जुड़ल हवा एगो छोटा सा मिस कर ब्रेक के बाद वापस आई ला जा।

0: सच्ची बात है जे पर्यावरण के हमनी स्वच्छ रखब जा त हमनी हमनी आदमी और हमनी संगे जितना पेड़ पौधा जीव जंतु जनावर सब होवन जा उ लोगो स्वच्छ रहियन जा और स्वस्थ रहियन जा। त हमनी संगे जुड़ल हवा आज की चर्चा कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमनी संगे होवन जा दू गो एक्सटेंशन ऑफिसर्स फागेदाने से श्रीमती गायत्री देवी जानिम बिसे सर और श्रीमान रेखानंद विदेशी और आज हमनी बात कर रहे थे जा डक एंड क्वेल प्रोडक्शन पर। तो अभी हमने देख लीजिए लोग के कौन कौन लाभ होता है बातें दोनों के बटेर और बटक के भी। तो हमने के बता हुआ था नहीं सुन विदेशी जी कि जो हमने बटक के बात कर रहा था जा कहाँ कहाँ पर ही मानी कि अवेलेबल बातें जे को जना किने के मन बातें लोग के वो लोग कहाँ चाहिए जा।
1: अच्छा तो अगर हम देखें तो लोकल मार्केट में सबसे ज़्यादा पेके ब्रीड चलती है।
0: अच्छा
1: इसका मांस बहुत टेंडर होता है और ये बहुत तेजी से बढ़ती है। पेकेडक्स लगभग 5 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू कर देती हैं और साल में 150 से 200 अंडे देती हैं और इनके अंडों को हाच में 28 डेज लगते हैं। दूसरे ब्रीड मस्कोवी ब्रीड यानी कानोमानी भी लोग पसंद करते हैं जो 7 महीने की उम्र में अंडे देना शुरू करती हैं। एक बार में 12 टू 15 अंडों का ग्रुप देती है। मस्कोवी डक्स खुद अंडे के लिए आसानी से तैयार हो जाती है जो इसे बाकी रिप्रोडक्शन के लिए बिल्कुल सही बनता है। अंडों के सीने में 35 डेज का समय लगता है। अब देखें तो कहाँ पर ये डक्स प्राप्त कर सकते हैं तो स्मॉल स्केल रजिस्टर्ड फार्मर्स को सबसे पहले गवर्नमेंट हैचरी देखनी चाहिए। रेजुई में पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर PBC है, पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर की डक यूनिट सीधे फार्मर्स को एक दिन के पेके डकलिन सप्लाई करती है। गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देती है इसलिए ये सिर्फ 32 रुपीज पर यूनिट में मिल जाते हैं। किसान PBC से एक दिन के बतख के बच्चे खरीदने के लिए ऑफिस जाकर या फोन कॉल द्वारा या ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हैचरीज में स्टॉक खत्म हो जाए तो आप प्राइवेट कमर्शियल ब्रीडर्स जैसे आवरिपो कंपनी लिमिटेड या इनिशा फार्मिंग से खरीद सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज एक दिन के डकलिंग के लिए 50 रुपीज से 70 रुपीज चार्ज करते हैं लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखिए लोकल मार्केट में एक एडल्ट पेकेडक लगभग 2 महीने 2 मंथ के करीब 1,000 रुपया में बिकती है और अगर आप इसे लाइव वेट पर बेच रहे हैं तो ये मार्केट में 150 से 250 पर किलोग्राम्स के बिक सकती हैं तो इसमें बहुत फ़ायदा होती है।
0: ये तो हम भी सुन रहे हैं पता चल रहा है हमको कि कितना फ़ायदा है इसमें। अच्छा तो हर्ष एक सवाल पूछती है अभी जितना जना खाए के मन बा लोग के किने के मन बा को लोग के पालन पोषण करे के मन बा वो लोग जस्ती कौन सी पसंद करे ले जाए डक के डकलिंग।
1: तो शुरू करते करने के लिए वो तो डकलिंग

0: परचेस बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पीबीसी पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर वो तो सब्सिडाइज प्राइस में बेचते हैं, तो अगर हम कोई एडवाइस देते हैं तो हम उसे पीबीसी से रजिस्टर्ड करने के लिए वहाँ कॉन्टैक्ट करें और डकलिन पेके ब्रीड को बाय कर सकते हैं।
1: जी गायत्री जी, हमने बात करत है जा जो डकलिंग क्वेल के बारे में भी, हमें बताइला कि जो क्वेल की जो अंडा बा वो कितना महत्वपूर्ण बात है। जितना जना वो लोग के अस्थमा सब होला, प्रॉब्लम होला हेल्थ स्वास्थ्य के, वो लोग ओकर अंडा जोन बाटे खा लन जा पिए लन जा, तो ये जो एग प्रोडक्शन वो कैसे होला?
2: हाँ, तो अंडे के उत्पादन कैसे होती है, 7 हफ्ते होने पर एज 7 वीक्स एज का एक फीमेल क्वेल अंडे देना शुरू करती है और एक साल में साल भर अंडे देती है और एक साल में 300 अंडे से ज़्यादा दे सकती है। तो अंडे को 2 या 3 दिन बाद दिन में उठाना चाहिए ताकि अंडे साफ रहे।
1: यानी कि जैसे बोला था वह साल भरती बरिस में लगभग 300 से जस्ती हुए अंडा उस
2: अंडे होते हैं।
1: हाँ। अच्छा,
2: तो उसके बेनिफिट्स तो होती है
1: जी।
2: और इसका प्राइस भी जो लेयर एग है वो ज़्यादा होती है, जहाँ यहाँ 10 रुपये में मिलती है क्वेल एग 15 रुपीज से ज़्यादा बेचते हैं।
1: तो जे दुकान जब बुटीक जब जस्ती तो मुर्गी के अंडा मिलेला। हाँ। क्वेल के अंडा तो नहीं दिखब सब, जस्ती कहाँ होकर बिक्री होला?
2: सुपरमार्केट में मिलती है। हाँ, तो जैसे मैंने कहा उसका प्राइस ज़्यादा होती है और लोग कैसे खाते हैं, उसको बॉयल करके खाते हैं या ऑमलेट बना के ये भी खाते हैं। हाँ, तो अब मैं बात करूँगी रिप्रोडक्शन पर
1: जी।
2: ये अगर एक फार्मर खुद के दे ओल्ड क्वेल प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसके लिए 1 मेल और 5 फीमेल चाहिए जो 7 हफ्ते के एज का हो, 7 वीक्स ओल्ड। जो अंडे मिलती है उनसे तो वो फर्टाइल होती है और उसको इंक्यूबेटर में डालना चाहिए 19 डेज तक। उसमें टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन दोनों का रेगुलेट करना चाहिए और 19 डेज के बाद क्वेल अंडे के बाहर निकलते हैं और उनके वज़न 8 ग्राम होती है, 8 ग्राम्स। हाँ, तो जब वो इंक्यूबेटर से निकलती है तो उसके बाद क्वेल को ब्रूडिंग बॉक्स में डालना चाहिए।
1: ब्रूडिंग मतलब कि शोफाज?
2: शोफाज
1: जी,
2: क्योंकि उनके जो फैदर है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ तो उनको हीट की आवश्यकता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर 37 डिग्रीज पर सेट करते हैं, उनको पानी और खाने के लिए भी देना चाहिए और ब्रूडिंग पीरियड 3 हफ्ते तक चलती है और हर हफ्ते टेम्परेचर को घटाते हैं और 3 हफ्ते पर वो 25 डिग्रीज हो जाती है तो फिर हीटिंग निकालते देते हैं।
1: अच्छा, आप हमने के बताओ जो कोयल सब बातें वो लोग कौन सी खालन सब?
2: हाँ, तो देखेंगे कि फीडिंग में जो मीट प्रोडक्शन करते हैं जैसे मैंने कहा तो 1 डे से 30 डेज तक ब्रॉयलर स्टार्टर देते हैं और 31 to 56 डेज तक ब्रॉयलर फिनिशर और 56 डेज पर वह स्लोटर वेट हो जाती है, उसका स्लोटर वेट तो उसको अब खा सकते हैं
1: जी।
2: हाँ, तो इस मांस जो है ज़्यादातर लोग कैसे खाना पसंद करते हैं, ग्रियाद करते हैं या उसको मैरिनेट करके कुक करते हैं, ऐसे खाते हैं।
1: हमने तो और भी सुना है कि और भी डिशेस बनाए जाते हैं,
2: बहुत से डिशेस बनती
1: जी,
2: है
1: जी।
2: हाँ, अब जो एग प्रोडक्शन करते हैं उस वो फीडिंग डिफरेंट होता है। 1 to 30 डेज तक चिक फीड देते हैं, 31 to 53 डेज तक पुलेट ग्रोअर और जब वो क्वेल अंडा देना शुरू करती है तो 54 डेज तो एंड ऑफ लेइंग साइकिल।

0: तक उसे लेंगमार देते हैं।
1: अच्छा रेखानंद जी, तुहु हमने के बतावा जो नशुफाज होला बटक के, वो कैसे होला?
2: अच्छा, तो नए पैदे हुए बतख के बच्चे को अपने बॉडी का टेम्परेचर बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा गर्मी की ज़रूरत होती है, जब तक कि उनके पंख अच्छे से डिवलप न हो जाए। डकलिंग्स को एक कन्फाइंड एरिया में साफ और सूखे लिटर के साथ रखा जाता है और हीट देने के लिए उनके ऊपर एक लैंप लटकाया जाता है। 100 वाट का बल्ब 50-50 डकलिंग्स के लिए काफ़ी हीट देता है। पहले वीक के दौरान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और बल्ब की हाइट को एडजस्ट करके हर वीक टेम्परेचर को 4 डिग्री सेल्सियस कम करना चाहिए। थर्ड वीक, तीसरे हफ्ते तक आप हीट सोर्स बल्ब को हटका सकते हैं क्योंकि वो तो मजबूत बन जाती हैं।
1: अच्छा, हमने के बताओ वो लोग कौन सी खालन सा जन बटक और डकलिंग्स कौन सी खालन सा वो लोग?
2: अच्छा, तो मीट प्रोडक्शन के लिए हम ब्रॉयलर डक्स पर फोकस करते हैं। अगर आप उन्हें सही से फीड देंगे तो वो सिर्फ 8 सप्ताह यानी 8 वीक्स में लगभग 4 किलोग्राम्स का स्लोटर वेट पूरा कर लेगी। हम कमर्शियल पेलेट्स रिकमेंड करते हैं क्योंकि इनके फीड एफिशिएंसी ज़्यादा होती हैं। ये आसानी से डाइजेस्ट होते हैं और इसे फीड वेस्ट नहीं होता। आपको उन्हें एडलिब फीड देना चाहिए यानी उनका फीडर हमेशा भरा होना चाहिए। 0 से 3 सप्ताह के लिए डक्स डॉटर छोटे दाने उसे करें यानी डकलिंग्स को डक्स डॉटर से फीड करें और 4 से 8 सप्ताह 4 to 8 weeks के लिए डक फिनिशर का यूज़ करें। अगर आप फीमेल लेयर डक्स रख रहे हैं तो जब वो 5 से 7 महीने की उम्र में, क्योंकि 5 महीने तो पेकर ब्रीड और 7 महीने तो मस्कुमानी का ब्रीड अंडे देने वाली, उन्हें ब्रीडर डक ब्रीडर मिक्स देना शुरू कर दे। आप ये सारे फीड लाइवस्टॉक फीड लिमिटेड या मीडर्स फीड लिमिटेड से आसानी से खरीद सकते हैं।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने वापस आए ला जाएगा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तहां आज हमनी बटक और बटेर पर चर्चा कर रहे थे जा विदेशी जी एगो सवाल आल हमर दिमाग में जब हमनी बटक की बात कर रहे थे जा ओकर जुन अंडा बा क्वेल के बारे में ते हमनी जानी ला जा जुन बटक बा ओकर अंडा कुसुमा भा कैसे कितना प्रतिशत
1: जी हाँ डक के अंडा लोग भी कंज्यूम करते हैं अच्छा लेकिन ज्यादातर वो डकलिंग्स को परचेस करते हैं और मांस के लिए उसे रेयर करती हैं क्योंकि दो मंथ के बाद ये एडल्ट बन जाते हैं और जैसे मैंने कहा 1000 रुपीज़ में बिकते हैं। अगर आप अंडे को प्रोडक्शन के लिए उसे रेयर करते हैं तो वो किसान पीके ब्रीड 5 मंथ को वेट करना चाहिए क्योंकि उनके रिप्रोडक्शन साइकिल वो अंडे को प्रोड्यूस जब वो 5 मंथ होते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ये पेकिंग ब्रीड जब अंडे देती हैं तो वो फीमेल उसे जैसे मुर्गी जैसे कहते हैं कि ब्रूडिंग हाँ तो वो नहीं कहते, हम उन अंडे को इंक्यूबेटर में रखना चाहिए। इंक्यूबेटर एक जैसे ओवन है 37.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी वाटर कंटेंट 70-80% 4 वीक्स पर रोज कंट्रोल करते हैं और उनमें बच्चे यानी डकलिंग्स हैच होते हैं। अब देखते हैं मानी ब्रीड, वो तो बहुत अंडे देते हैं और वो गुड ब्रूडर्स होती हैं यानी वो अंडों पर बैठती हैं और देखते हैं कि 6 वीक्स के बाद वो डकलिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो मानी के ब्रीड से हमें इंक्यूबेटर का ज़रूरत नहीं है।
0: ये तो बहुत ही अच्छा बात बाटी। तो अभी जैसे बोलत रह कि ओकर मांग बाटी इतना जस्सी नहीं बाटी पर कल्ली कल्ली लोग जानत होवन जा एक जो लाभ होता

0: आज जैसे बोला अभी लोकल मार्केट में एकर मांग काहे बाटी?
1: जी हाँ, अगर हम देखें तो बहुत बतख की डिमांड तो ज़्यादा है, खासकर ईस्टर और क्रिसमस जैसे फेस्टिवल सीजन्स में। लोकल होटल्स और रेस्टोरों में भी इसकी हाई एंड डिमांड है, खासकर स्पेशलिटी आइटम्स जैसे फैटी लिवर यानी फ्वाग्रा के लिए। यहाँ तक कि इसके बाय प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू है। आप इसके पंखों यानी फेदर्स को तकिए और कुशन बनाने वाली कंपनीज को बेच सकती हैं। इसी वजह से लोकल लाइवस्टॉक मार्केट प्लेसेस में डक मीट की बहुत अच्छी कीमत मिलती है।
0: अच्छा, ये भी होता है?
1: जी हाँ,
0: ये तो बहुत ही ठीक बात है। और हमने बात कर रहे थे जब बटक और बटेर, गायत्री जी हमने जब बात करी ला जब मुर्गी के हमने जाना फीमे सब होला, तो कोयल के भी होला? हाँ। फीमे को जो वेस्ट बाटे कैसे इस्तेमाल होला?
2: तो क्वेल के जो सॉलिड वेस्ट होती है उसको समेटते हैं और उसे हम कंपोस्ट बनाते हैं। और उसके बिकॉज एनिमल सोर्स के ओरिजिन है वो कंपोस्ट, जो एनपीके बहुत हाई होती है, कंटेंट नाइट्रोजन पोटाशियम और कैल्शियम जो प्लांट्स के लिए आवश्यक है, उस वो काफ़ी हाई होती है तो वो कंटेंट। तो उस कंपोस्ट को हम अपने गार्डन में या फ्लावर पॉट में इस्तेमाल करते हैं।
0: माने कि जब घर बनावत हो, क्वेल के हो न तो बटक के हो, चाहे निमन से उकर ढांचा सब बनाए के जब उकर नीचे सब फर्श सब डालत हुआ, चाहे माने कि एगो चियोता शाहिला हो के कैसे निमन से जमे उन लोग के जो सॉलिड वेस्ट कैसे?
2: हाँ, तो क्वेल जैसे हमने कहा वो बैटरी केज में होती है, वो ऊपर होती है, तो नीचे आप एक जो भी डाल सकते हैं, एक वुडन प्लेटफॉर्म, तो वो मान्यो उस
0: माने कि छेद होने चाहिए, छेद सब जमे नीचे सब जाए,
2: वो तो वाई मेश पर है तो वो नीचे ही जाएगी और उसको कलेक्ट करते हैं। और वैसे ऐसे ही जो फर्श होती है वो साफ रहती है।
0: तो एकर मांग बाते जैसे मुर्गी के जो फीमिया बाते,
2: हाँ, जैसे मुर्गी के है वैसे ही क्वेल के कंपोस्ट भी उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो ऐसे ही होता
0: है। और कितना दिन पर का है कि हमने जाने ला जा जो मुर्गी के जो वेस्ट बाटे सॉलिड वेस्ट फीमिया बनाए खातिर, ओकरा आप चाहे ला निमन से रखे के सूखे में धूप घामा सब चाहे ला?
2: जब कंपोस्ट बनाते हैं तो उसको ढकते हैं ताकि रेन वाटर उसमें ना आए और रेगुलर टर्निंग करते हैं। वो अगर समर के पीरियड होती है तो 2 महीने में तैयार हो जाती है और 2 महीने के बाद आप उस कंपोस्ट को लेकर अपने प्लांटेशन में, गार्डन में या फ्लावर पॉट में इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: और विदेशी जी जो बटक बाते लोग के जो सॉलिड वेस्ट पर उकर इस्तेमाल कैसे होला, कैसे मैनेजमेंट होला?
1: हाँ, वेस्ट मैनेजमेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब बतख को पालती हैं, अगर मैनेजमेंट खराब होगा तो बदबू, मक्खियों, चूहे और पानी का पोल्यूशन बढ़ेगा। फार्मर्स को अपना यार्ड बिल्कुल साफ रखना चाहिए, एंश्योर करे कि शेड फ्लाई प्रूफ हो, वहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो और बेडिंग हमेशा सूखी रहे। अपना फीड हमेशा एयर टाइट बिन्स में बंद करके रखें ताकि चूहे अट्रैक्ट न हो, और ड्रेन्स के रेगुलर सफाई करें। सबसे ज़रूरी बात, सॉलिड वेस्ट और पुरानी बेडिंग से कंपोस्ट बनाएं और सारा गंदा पानी एक सही सेप्टिक टैंक में ही बनाएं।
0: अच्छा, एक प्रश्न तो आप दोनों से हमने पूछता जा कि अभी हमने हमेशा क्लाइमेट चेंज है, अभी जैसे जलता लेता कभी खामा कभी मोटका पानी सब आवेला, तो क्लाइमेट चेंज के चलते जो क्वेल और बटक प्रोडक्शन बातें वो अफेक्ट हो सके ना?
2: हाँ, तो क्लाइमेट चेंज लाइवस्टॉक को अफेक्ट करती है टेम्परेचर, इसीलिए जब हाउसिंग बनाते हैं तो उसमें ज़्यादा ओपनिंग्स होना चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, और फ्लडिंग से बचाने के लिए आप हाउसिंग को रेज्ड कर सकते हैं, ड्रेन इसके चारों ओर ड्रेन्स बना सकते हैं। और क्वेल तो बैटरी केज में है और वो 1 मीटर हाइट पर है, तो ये सब अडाप्टेशन है क्लाइमेट चेंज से।
0: अच्छा, यहाँ पर एक और

0: प्रश्न हमार दिमाग में चलाल, हमनी जब खेती बाड़ी के बात करी ला जा, हमनी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बात करी ला जा, तो लाइफ स्टॉक में भी कुछ हो रहेला ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक लाइफ स्टॉक
1: कमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हम कंसंट्रेट फीड इस्तेमाल करते हैं और कंसंट्रेट फीड पता नहीं कि ऑर्गेनिक है या नहीं।
0: अच्छा,
1: हाँ, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग डिफ़िकल्ट है। लेकिन मस्कोवी को लेकर, पेकिंग डक को लेकर, वो तो कमर्शियल फार्मिंग होती है, लेकिन पेकिंग डक जो मस्कोवी है वो हम मेज दे सकते हैं, कुछ राइस दे सकते हैं, लेकिन ओरिजिन ऑर्गेनिक होना चाहिए। ये हम ऑर्गेनिक कर सकते हैं, इसके मांस को भी और उसके एग को भी।
0: अच्छा हबी, ढेर जाना सकेला तोलो के सुन के ऐतिहासिक हवन जा क्वेल और जोन बटेर के प्रोडक्शन उकर उत्पादन करे खातिर, तो उलो के फायदे से कौन कौन फैसिलिटी मिलेला विदेशी जी?
2: जी हाँ, मैं तो सभी से इनविटेशन करना चाहता हूँ कि वो फूड एग्रीकल्चर रिसर्च एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट यानी फारे के ऑफिसर्स को विजिट करें। हम डक प्रोडक्शन और फॉर्म मैनेजमेंट में बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कोर्सेज करवाते हैं,
0: जैसे कि
2: ये डक प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, क्वेल प्रोडक्शन। तो इस ट्रेनिंग कोर्स, जैसे कि मैंने बताया, हम एक दो तीन चार दिन हाफ डेज ट्रेनिंग कोर्स देते हैं, और डिफरेंट टॉपिक्स से, यानी हाउसिंग, फीडिंग, बायोसिक्योरिटी मेजर्स, ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम उस चार दिन में कवर करते हैं।
0: माने कि थ्योरी और प्रैक्टिस भी,
2: तीन हाफ डेज थ्योरी, और फोर्थ डेज में हम एक कंडक्टर टूर करते हैं। तो हम एक डक फॉर्म को, जब मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ, तो हम सारे पार्टिसिपेंट को एल्बियन ले जाते हैं। वहाँ पर, जैसे मैंने कहा, रेजी पोल्ट्री ब्रीडिंग सेंटर, तो वहाँ पर वो डकलिंग बेचते हैं, पर उसके पेरेंट्स को वो एल्बियन फॉर्म में रेयर करते हैं। वहाँ पर ढेर पेरेंट हैं, और वहाँ पर मेल और फीमेल को रेयर करते हैं, और वो अंडे जब फीमेल देती हैं, तो हम उनको कलेक्ट करके इंक्यूबेटर में डालकर वो डकलिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। तो हम इन सब पार्टिसिपेंट्स को वहाँ को लेकर ये सब दिखाते हैं, कैसे वहाँ पर ये पेकें डक का ब्रीड वो रेस करती
0: है। स्टेप बाय स्टेप जो चीज सिखावल जाला कि कैसे लोग के रेयरिंग होला, कैसे ब्रूडिंग होला, कैसे इंक्यूबेटर में डालल जाला, कैसे अंडा के जो प्रोडक्शन बाते, जो वेस्टेज बाते, वेस्ट मैनेज, सब दिखावल जाला, सिखावल जाला।
2: एग्जैक्टली, ताकि जब ये किसान वो शुरू करते हैं, तो वो जानते हैं कि कौन सी स्टेप करना चाहिए ताकि उनकी बिजनेस प्रॉफिट में रहे, कोई नुकसान न रहे। खासकर जब वो डकलिंग को परचेस करते हैं, तो ये ब्रूडिंग, जैसे मैंने कहा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उनको हीट, उनको बल्ब से हीट देना 2 हफ्ते में, 24 hours एवरी डे, उन पर लीटर पर रेयर करना, क्योंकि ये तो कंक्रीट फो कोल्ड उसे देखने, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं ना, तो उनके फेजर्स नहीं।

0: क्योंकि ये तो कंक्रीट फो कोल्ड उसे देखते हैं, क्योंकि वो तो बहुत छोटे हैं ना, तो उनके फेजर्स नहीं का ऑपरेशन करते हैं, वहाँ पर हम ये ट्रेनिंग कोर्स देते हैं।
1: और कौन कौन स्कीम्स बातें?
2: हाँ, तो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे फ्लैग मॉडल फार्म में डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर जो है, वहाँ पर एक डक यूनिट है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट हो देखना चाहते हैं कि कैसे उसका हाउसिंग होना चाहिए, तो वहाँ पर जाकर हम उसे एक विज़िट करा सकते हैं और वो देख सकता है कि हाउसिंग कैसा है और वो रन कैसा है, कैसे पानी देना चाहिए, कैसे रियर करते हैं।
1: और खाली हौजा पहुंच के वो लोग सखियंजा करे कि चाहेला फ़ोन करे कि अगाड़ी हाँ एक पर कैसे?
2: हाँ, एक अपॉइंटमेंट लेना लेते हैं, तो रेखानंद जी वहाँ पर है, तो उनको लेकर एक विजिट और एक्सप्लानेशन भी दे सकते हैं।
1: तो क्वेल के बारे में कैसे ट्रेनिंग होला?
2: क्वेल में हम ट्रेनिंग देते हैं, इट्स अ टू डे सेशन, वन थ्योरी और एक विजिट। विजिट में हम एक क्वेल फार्म पर जाते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्वेल को पालते हैं। अब देखेंगे कि कैसे और सुविधा होती है, तो ग्रांट स्कीम्स है, जो भी प्रोजेक्ट्स है क्वेल फार्मर्स के या डक फार्मर्स के, जैसे अगर उनके हाउसिंग को अपग्रेड करना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसका स्कीम है। दूसरा स्कीम है इक्विपमेंट पर, जैसे मैंने कहा बैटरी केज होती है, तरह तरह के इक्विपमेंट चाहिए उनके पालन पोषण में, तो वो इक्विपमेंट के खरीदारी के लिए मिलती है। सीसीटीवी कैमरा है, इंस्टॉलेशन और फेंसिंग इक्विपमेंट भी है, तो ये सब सुविधाएं मिलती है क्वेल और डक फार्मर्स को।
1: अच्छा, जितना जना अभी क्वेल के हो के बटक के हो, उन लोग के कौन डॉक्यूमेंट चाहे ला ले जाए के?
2: हाँ, तो बेसिकली जैसे कि उनके लीज एग्रीमेंट या उनके टाइटल डीड, जहाँ पर वे अपना पालन पोषण कर रहे हैं।
1: तो चाहेला एगो कार्ड प्लांट है, जैसे होला एगो कार्ड चाहेला होए के?
2: वो ब्रीडर्स कार्ड होना चाहिए। हाँ, स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड पर जाके एप्लीकेशन करते हैं, और कोटेशन चाहिए, जो भी इक्विपमेंट हो या अपग्रेडिंग हो उनका कोटेशन होना चाहिए, और अन्य छोटा सा डॉक्यूमेंट जो अकंपनी करेंगे उनके एप्लीकेशन को। और एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है हर एक्सटेंशन सब ऑफिस में, तो वे हमारे यहाँ आ सकते हैं जानकारी के लिए, क्वेल पर, बतख पर या अन्य जानकारी, जैसे जो भी ग्रांट स्कीम है, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म उनको चाहिए, हम मदद करेंगे, और चेकलिस्ट है, उनको सब बताएंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए।
1: और हमेशा नियन फागे जन बातें सरकार बातें, हमेशा जितना जन ब्रीडर्स हवन जा, जितना प्लौते वो सब हवन जा, उन लोग के मदद पहुँचावे लन जा। कितना स्कीम्स बातें, ग्रांट्स बातें, हमने के कार्यक्रम लगभग समाप्त हुआ था। रेखानंद विदेशी जी, जैसे आके तुहर मॉडल ऑफर जैसे हमने बोली राजा,
0: तो मैं ये किसान से मांग करता हूँ कि डक रेयरिंग बहुत आसान होती है, स्पेशली वीमेन जो घर पर रहते हैं, तो ये पार्ट टाइम जॉब इसलिए आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा डक पालने में बहुत बहुत आसान है, नो वैक्सीनेशन, डक सब खा सकते हैं, यानी कंसेंट्रेट, यो तो किचन वेस्ट, ग्रीन्स, तो इसमें सिर्फ एक अच्छी जगह होना चाहिए, एक पेन, एक शेड जैसे कहते हैं, और वो रन और एक पंड, वाटर पंड, तो आप आसानी से उसे पाल सकते हैं, और हर दो मंथ के बाद आप उसे बेचकर प्रॉफिट
1: आमदनी पा सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: गायत्री जी।
2: और क्वेल का भी जो भी छोटा सा स्पेस हो, जैसे रेखानंद जी ने कहा पार्ट टाइम रेवेन्यू मिलना मिल सकती है, और 25 क्वेल्स अगर आप रियर करेंगे तो रोज़ अंडे मिलेंगे, और कुछ आप कंज्यूम करें, जो भी ज़्यादा हो वो बेच सकते हैं, और इससे ज़्यादा मैंने कहा इसका जो प्राइस

0: वो हाई है. अब अगर जानकारी चाहते हैं तो जैसे मैंने कहा किसी भी सब ऑफिस में आइए. हमारे सैंपियर के ऑफिस का नंबर है 4339350 और हमसे मिलिए और हम आपको गाइड करेंगे एनी डक या क्वेल प्रोजेक्ट में.
1: तो जे बटक के जे क्वेल मन की बटेर के जन उत्पादन करे के मन बातें पालन पोषण करे के मन बातें ये बहुत ही आसान बातें. बस तनी सुन जगह चाहेला तनी सुन वनों तो भी चाहेला. हाँ मेहनत करबा तो मेहनत के फल मिली तोहरा खाए के और उजे बेचबा तो तोहर पैसा मिली तोहरा आमदनी मिली. तो आप दोनों मेहमान के श्रीमती गायत्री देवी जान एमबीसी सर और श्रीमान रेखानंद बिदेसी आप दोनों के बहुत बहुत धन्यवाद. और हमने के सब जना संगे हमने तोहर से बोलब जा धन्यवाद और प्रणाम नमस्ते.
0: नमस्ते.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Mano.
2: Check your time. It's exactly 4 p.m. आइए सुनते हैं समाचार टीना के साथ. नमस्कार.
3: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. बदलती दुनिया की जरूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इसी सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है. इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं. और उद्घाटन आज रेजवी स्थित ओक्टावियस ऑडिटोरियम में हुआ. 30 बिलियन रुपये का ये कॉन्ट्रैक्ट एफसीसी की जांच के केंद्र में है. जांच एजेंसी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप एमएमजी को ये कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों में मिला, जबकि शुरुआत में कंपनी 7 बोलीदाताओं की सूची में शामिल नहीं थी.

0: जांचकर्ताओं समय के राजनीतिक नेताओं और एमएमजी के अधिकारियों के बीच हुई मुलाकातों और घटनाओं के क्रम की भी जांच कर रही है। और ब्रिटेन में रह रहे शागजवासियों के एक समूह ने अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की मांग की है। इस समूह में ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम को एक पत्र भेजकर उनसे शागस द्वीप समूह के हस्तांतरण को रद्द करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात करने की भी मांग की है। 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में मर्शन मुक्केबाजों का प्रदर्शन मिला जुला रहा। जिगियागत क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वहीं मारिन गैब्रियल ने भी अंतिम 16 में जगह बना ली है। हालांकि फैब्रिस वालेरी का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में ही समाप्त हो गया। और विदेश में अमेरिका के सिएटल में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है और पुलिस मौके पर पहुंच गई है। ये घटना शहर के मशहूर लैंडमार्क स्पेस नीडल के पास स्थित सिएटल सेंटर में हुई। दमकल कर्मी के अनुसार सिएटल सेंटर में हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है और कम से कम 5 अन्य घायल हुए हैं। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में एक शोक समाचार। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुरांपा में 78 साल के 78 ईयर्स ओल्ड के श्री जीवन पीहो जो सत्यदेव नाम से ज़रा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुरांपा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: Aapke sitare.
3: सोमवार 27 जुलाई घड़ी मिला लीजिए शाम के 4:04। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं। मैं हूँ सुमिता और आप सबका साथ देने के लिए हम आ चुके हैं रेडियो मनोरंजन पर लेकर आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपके सितारे। कैसे हैं आप सभी? ठीक है ना? मंडे का ये दिन उम्मीद करते हैं अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है हम आपका साथ देने वाले हैं आपके सितारे प्रोग्राम। और आपके सितारे प्रोग्राम में आज हम किन पर बात करेंगे आप भी सोच रहे होंगे और हम भी सोच ही रहे थे। आज जो है बॉलीवुड की एक पॉपुलर सिंगर, एक प्लेबैक सिंगर आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। 27 जुलाई 1963 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने हिंदी के साथ साथ कई अन्य भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। हिंदी के साथ साथ साउथ की फिल्मों में इन्होंने काफ़ी पॉपुलर गाने गाए हैं। तो आज का हमारा जो आपके सितारे प्रोग्राम है वो होगा चित्रा जी पर जो प्लेबैक सिंगर तो है ही, साथ ही कर्नाटिक म्यूजिशियन भी है। 5 दशक से भी पहले अपने ज़्यादा अपने करियर में इन्होंने 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं लव फिल्म के इस गाने के साथ। लव ये जो फिल्म है ये इसमें सलमान खान नजर आए थे, साथ में रेवती थी और इस गाने को गाया है चित्रा जी के साथ साथ SP बालसुब्रमण्यम जी ने।
2: RM3 रेडियो

0: के सितारे।
1: चलिए आज जितने भी लोग आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको बता दें कि यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे विद द लेजेंडरी सिंगर चित्रा। चित्रा जी जो है 27 जुलाई 1963 को इनका जन्म हुआ था और ये जो है दुनिया भर में ग्लोबल वॉइस ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है और इन्होंने 5 दशक से भी ज़्यादा फैले अपने करियर में 25,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, अवधी, मराठी, गुजराती, आसामी, मणिपुर, संस्कृत और न जाने कितनी भाषाओं में। इनकी बात करें तो इनका जन्म जो है केरला, स्टेट ऑफ केरला में हुआ था। इनके पिता एक स्कूल टीचर थे और साथ ही म्यूजिक में इनकी काफ़ी

0: और ऑब्वियसली पिता की दिलचस्पी संगीत में और इनकी माँ अपने आप में एक संगीत टीचर, तो बच्चों का तो संगीत की ओर लगाव बढ़ता ही है। और इन्होंने जो है इनके करियर की शुरुआत जो है गायकी में एज अ सिंगर वो खासकर साउथ की फिल्मों से हुई थी। और हिंदी फिल्मों की बात करें तो 80 के दशक में जो है इन्हें इंट्रोड्यूस किया था हिंदी फिल्मों में, और वहाँ से लव फिल्म से जो है इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी। लव फिल्म का गाना जो अभी आपने सुना, अभी के लिए चले इस अगले खूबसूरत गाने के साथ अपने प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं, और साथ देते रहिएगा हमारा शाम के 6 बजे तक।
1: You're listening to RM3 Radio Mana.

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर चित्रा जी के बारे में, हु इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे। ऐसे सिर्फ फिल्मों के लिए ही इन्होंने गाने नहीं गाए हैं, ये लाइव शोज भी करती है, काफ़ी टीवी सीरियल्स में जो गाने होते हैं उनके लिए भी इन्होंने गाने गाए हैं, और काफ़ी रियलिटी सिंगिंग शो को ये जो है जज भी कर चुकी है। जज के रूप में जो है ये वहाँ पर मतलब कि एज अ जज भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। और बात करें इनकी तो इन्होंने शुरुआत की थी हिंदी फिल्मों में लव फिल्म के गानों के साथ। इन फिल्म के गानों को आनंद मिलन जी ने कंपोज किया था और एस पी बाला सुब्रमण्यम जी के साथ इन्होंने काफ़ी गाने गाए हैं। ऐसे 2500 से भी ज़्यादा इन्होंने गाने गाए हैं, लेकिन 200 से ज़्यादा इन्होंने बॉलीवुड के गाने गाए हैं। तो चलिए अभी के लिए कुछ खूबसूरत गानों की बात करें, तो अगला जो तराना जो हम आपके लिए चलाने वाले हैं, इट इज़ फ्रॉम द मूवी बॉम्बे। बॉम्बे इस फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में जो है अरविंद स्वामी नज़र आए थे, साथ में मनीषा कोइराला थी, और बॉम्बे फिल्म का ये गाना जो पिक्चराइज हुआ था मनीषा कोइराला पर, जिसे गाया था चित्रा जी ने, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। तो चलिए साथ में मिलकर सुनते हैं इस गाने को।

सितारे और आपके सितारे इस प्रोग्राम को आप एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। नॉट टू फॉरगेट, आप अपने मैसेजेस भेज सकते हैं ऑन 5250600 पर, साथ ही आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन 4028070। चित्रा जी का कोई गाना किसी के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। पर किसी ने हमें मैसेज भेजा है, लेकिन जिन्होंने मैसेज भेजा है उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, कहा कि लवली प्लेलिस्ट ऑफ चित्रा जी, जो दूसरा गाना हमने चलाया था इस प्रोग्राम में उन्हें बहुत पसंद आया था, तो थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज। ऐसे चित्रा जी के सभी गाने बड़े कमाल के हैं। अगला जो गाना हम चलाने वाले हैं, पिया बसंती, इस एल्बम का तराना है। ये गाना उन्होंने उस्ताद सुल्तान खान जी के साथ गाया था और ये गाना भी उनके करियर के बेहतरीन गानों में से एक है।

0: के सितारे।
1: चलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज आपके सितारे प्रोग्राम के गाने काफी मेलेडियस है, क्योंकि गाए हुए जितने भी गाने हम आपके लिए चला रहे हैं वो चित्रा जी के गाए हुए गाने हैं। दो घंटों का ये जो सफ़र है इसे आप इंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगला जो तराना है जो हम आपके लिए चलाएंगे वो है टेकन फ्रॉम द मूवी विरासत। विरासत इस फिल्म की बात करें तो ये जो फिल्म है 90s के सालों में आई थी, 1997 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में ऑब्वियसली अनिल कपूर नज़र आए थे, साथ में तब्बू थी। फिल्म काफ़ी पॉपुलर हुई थी और फिल्म का ये जो गाना अभी हम आपके लिए चलाने वाले हैं, पायली चुनमुन चुनमुन, ये जो गाना है कुमार सानू और चित्रा जी की आवाज़ों में है। और चित्रा जी को इस गाने के लिए जो है शायद अवार्ड मिला था, शायद नहीं ना, वो नॉमिनेट हुई थी इस गाने के लिए। और ना उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स की ओर से जो है इस गाने के लिए अवार्ड मिला था, फिल्म फेयर की ओर से ये नॉमिनेट हुई थी। तो चलिए इस गाने को एंजॉय करते हैं साथ में मिलकर।

0: के सितारे।
1: चलिए यहाँ पर आपके सितारे के इस सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम हम करते हैं और आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो सो मच। और इस समय जो है चित्रा जी पर ये जो खास प्रोग्राम है आज हम चला रहे हैं और जहाँ कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसके लिए थैंक यू वेरी मच। शाम के 6 बजे तक आपके सितारे जो प्रोग्राम है चलने वाला है। इस समय घर पर घर का काम करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं या काम से निकल कर अपने अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में सफ़र के साथ साथ इन गानों का भी एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सरिता जी का ट्रबोन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही है कि चित्रा जी का एक गाना हमारे लिए भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सरिता जी, चलिए अगला जो तराना है मैं प्रेम की दीवानी हूँ फिल्म का तराना है। चित्रा जी और केके की आवाज़ों में आपके नाम हम करते हैं।

0: के सितारे।
1: चलिए चित्रा जी की बात करें तो बॉलीवुड के काफी बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया, आनंद मिलन, अनु मलिक और खासकर अनु मलिक जी के साथ इन्होंने काफ़ी काम किया, गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं और वहीं पर एआर रहमान जी को कैसे भूल सकते हैं, इनके साथ भी इन्होंने काफ़ी फिल्मों में जो है काम किया है यानी कि गाने गाए हैं। और 2003 में आई फिल्म मैं प्रेम की दीवानी हूँ में इन्होंने ज़्यादातर गाने गाए हैं। और ऐसे तो अगर हम साउथ की फिल्मों की बात करें और इनके हिंदी फिल्मी करियर की बात करें तो हिंदी फिल्मी करियर जो है इनका एज़ कम्पेयर टू साउथ की फिल्मों का काफ़ी छोटा रहा है, यानी कि इनके जीवन का एक हिस्सा रहा है, लेकिन फिर भी जितनी पॉपुलैरिटी इन्होंने हासिल की है वो काबिले तारीफ है।

चले ऐसे में अगला जो गाना है वो है प्यार तूने क्या किया इस फिल्म का टाइटल ट्रैक चित्रा जी की आवाज में ये फिल्म जितनी पॉपुलर हुई थी उतना ही पॉपुलर ये गाना भी हुआ था

0: के सितारे।
1: चलिए परदेस फिल्म का बड़ा ही खूबसूरत सा तराना अभी आप सुन रहे थे, चित्रा जी और शंकर महादेवन जी की आवाजों में। ऐसे चित्रा जी की बात करें तो जो इनकी आवाज़ में एक क्लासिकल टच है वो अपने आप में बड़ा कमाल का है ना। ऐसे ज़्यादा गाने तो उन्होंने बॉलीवुड के लिए नहीं गाए हैं, लेकिन जितने भी गाए हैं आई बिलीव ज़्यादातर गाने काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, काफ़ी हिट हुए हैं। 90s और 2000s के जो गाने इन्होंने गाए हैं वो आज भी एवरग्रीन हिट के लिस्ट में शामिल होते हैं। अगला जो तराना है कोई मिल गया फिल्म का ये टाइटल ट्रैक होने वाला है। उदित नारायण और चित्रा जी की आवाज़ों में आप सभी लवली लिसनर्स के नाम जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑन रेडियो मनोरंजन, दिस इज़ योर आपके सितारे। आपके सितारे जो प्रोग्राम है चलता है हर मंडे और ट्यूसडेज को शाम के 4 से 6 बजे के बीच।

0: आपके सितारे।
1: चलिए आपके सितारे ये जो प्रोग्राम है आज चित्रा जी पर रहा। टुडे शी इज सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। उनको उनके सभी फैंस की ओर से वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज के इस आखिरी गाने की ओर। आपको तो पता ही है 5:50 पर जो है समय होगा हमारी धरोहर इस कार्यक्रम का, जिसे आप सुन पाएंगे किरण जानकी जी से। सो जाते जाते ये जो आखिरी गाना है हम यहाँ पर करते हैं आपके नाम आशा जी, जो कुतेज से हमारे साथ जुड़ी हुई है। गाना जाता है इनकी ओर से मामा कुमारी, सभी जानू फैमिलीज के नाम और हमारे तमाम सुनने वालों के नाम। तो चलिए इसी गाने के साथ आपके सितारे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 5:50 पर होगा हमारी धरोहर कार्यक्रम और 6 जो है आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर। और ऐसे ही जो है आप रेडियो मनोरंजन पर साथ देते रहिए हमारा। नमस्कार आप सभी को।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपकी स्वागत बा। हमने गल सप्ताह जैसे दिखला अपन देश में जो एगो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बा, जोन एगो विश्व विरासत स्थल बा, जोन की मॉरिशस में पहला हला अगर लिस्टिंग होल आप्रवासी घाट, ओकर पर ध्यान देते आल है जा। और फिर ये भी देखते है जा कि हमने के देश में शर्तबंद मजदूरी कैसे शुरू होल, कैसे उ लोग के काम चलत रहल। और आज देखब जा कि हमने के देश में जोन कहाँ रहल ढाका जेके बोलीला सा, ओकर व्यवस्था कैसन रहल। ऐसन ढेर क्रियोली फ्रेंच या अंग्रेजी शब्द बा जेके हमने के बुजुर्ग लोग ओकर उच्चारण भोजपुरी में करे रंजा। अब जैसे अग्रिमेट बनर घिरमिटिया, शिमिस दोम बनल सिमिदोम, घोंद और पिचित बौंद बनल घों और चिबान। और ऐसा ढेर शब्द बा जोन अलग अलग रूप में प्रयोग होवेला। और ऐसने ही बनल कौ से ढाका दौकों, और आबितासियों बनल बिदासो बनल ताबिस्मो। हमने के देश में जितना शुगर एस्टेट रहल, शक्कर प्रतिष्ठान रहल, ओकर संगे गिरमिटिया मजदूर लोग के रहे खातिर एगो काम भी रहल ढाका। और यहाँ पर जे लोग रहे उ लोग अपन ताबिस्मो के भीर ही रहते रहन सा, ताकि उ लोग के काम करे में आसानी।

हुई। जानेला कि का अलग अलग रहल, कहूँ छोटा छोटा झोंपड़े रहे जहाँ पर लापाई लालवा से उ कॉमनल बा और गोबर से लिपल बा, तो कहूँ कौ तुल रहे, कहूँ कौ पत्थर के बनल कौ होस रहे, अलग अलग व्यवस्था रहल हमने के देश में आवे होला गिरमिटा लोग के शरण देवे खातिर। और ई जोन कौ रहल एकर अंदर बहुत कमती सामान रहल, सकबा गिने कोची कोची रहल, सखी एगो पिरहा रहे, खटिया रहे, कपड़ा रखे के एगो संदूक रही, और सबसे ज़रूरी उही घर में एगो रसोई रहल और रसोई के ऊपरे एगो मचान रहल। गाँव में गाय बकरी पोसे खातिर छोटा जगह के प्रबंध करल जात रहल एगो दूर कोना में। और ई असर जब एगो गाय एगो बकरी एगो गाँव में रहे ओकर अस्तबल जब दूर रहे तो एकर असर भी काफ़ी बुरा रहल। बोले लंजा कि जब बाढ़ आए तूफान आए तो गाय बकरी बह जाए, गाय बकरी चोरी हो जाए, ऐसा ढेर खतरा बनल रहे। अब एगो उदाहरण ले जा थियानो के जोन शुगर एस्टेट बा थियानो बाराक्स 1803 में ईता बिस्मा मौ तैमो को स्थापित कर ले रहल और 200 बरिस तक साल 2003 तक यहाँ एक के आखिरी फसल हो। 19वीं सदी के ई शुगर एस्टेट में 1469 औरत मरद और लड़का रहत रहल। उ लोग के कौ के अलग अलग नाम रहल, जैसे कौ लापाए, कौ मुर्गी, कौ दुख, कौ लाओ, कौ तुल। 1974 में यहाँ के कौ में लौंगा जोन रहल ओके नेशनल मॉन्यूमेंट के लिस्ट में शामिल करा गए और आप्रवासी घाट एकर संरक्षण एकर रेस्टोरेशन पूरा कर लग कितने समय लेके। तो ये रहल कौ के बात। अब चले देखे कि एगो मजदूर के दिनचर्या कैसन रहल, फजीर से सांझ ले उ का करी। 19वीं सदी में जब अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखब जा तो एगो मजदूर के चाहे सप्ताह में 6 या 7 दिन काम करे के 13 से 15 घंटा एक दिन, आज निखर 8 घंटा नहीं। लेकिन यहाँ पर मजदूर लोग बहुत जस्ती मेहनत कर रहे जा ओकर से जस्ती, फजीर के लापेल जब हो तो उ लोग उठियन से एगो बड़ा लाखलोस रहल काम में उ बजावल जात रहल बुनेरे 4 बजे से आगे अपन भात तकारी पका चुका के चाऊ ले के उ लोग जयन से मौके उ लोग के अटेंडेंस ले और सदार उ लोग के काम बांटी। बोले लंजा कि गिरमिटिया लोग के जमाना में फजीर के घामा उगे से आगे उ लोग खेत में काम शुरू कर देवत रहलनसा और घामा डूबला के बाद घरे जात रहलनसा। जब काम करियनसा तो उ लोग पर कड़ा नजर रखे खातिर प्लौते या सियादा रहे, थोड़ा आराम खातिर जे रुकला और उ लोग थोड़ा देख लियन जा तो आपके अपमानित करियन सा, साथ ही काम के और बढ़ा देवल जात रहल। तो कहाँ 4 बजे या 6 बजे आप घरे जेब तो वो 1-2 घंटा से और बढ़ा देवल जाए। गासियों भी कटात रहल है और पगार भी बात बात में तोहर पगार कटात रहल, जे एक दिन के काम आपके जुनबा वो साहेब ओकर से खुश नहीं रही तो वो पूरा दिन के पगार आपके नहीं मिली। एक दिन आप जे बीमार होला काम करे नहीं अला तो 2 दिन के पगार कटात रहल। तो ऐसन ऐसन परिस्थिति में हमने के पूर्वज लोग जीलन जा, हमने के बाप दादा परदादा परनाना लोग काम कर लन जा और आज हमने जैसन लड़का लोग के छोड़ के गल हवन जा और हमने के फर्ज बनेला कि उ लोग के जो मेहनत करके संस्कृति रहल ओके हमने अपन जीवन में उतारब जा। और आज भी भले ही परिप्रेक्ष्य बदल गल बा लेकिन जीवन में उतने ही मेहनत सहनशीलता और दृढ़ता से काम करब जा जितना कि हमने के पूर्वज लोग कर ले आला हवन जा। धन्यवाद, नमस्ते।

नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 30 बिलियन रुपए के कॉन्ट्रैक्ट की जांच में अब नए पहलुओं की पड़ताल। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन से पता लगा है कि मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट आखिर किन परिस्थितियों में मिला और पूरी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर वाहन चालकों ने एक अनोखे अंदाज में लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो एक बार फिर सड़कों के रखरखाव के मुद्दे को चर्चा में ले आया है। डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी में अब लड़कियां भी अपनी अलग पहचान बना रही है। लड़की लकड़ी और मेटल से तैयार किए गए उनके प्रोजेक्ट रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का शानदार उदाहरण पेश कर रही है। विदेश में कोंगो में इबोला का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। संक्रमितों और मृतकों की संख्या बढ़ रही है, जबकि स्वास्थ्य एजेंसियां वायरस को नए इलाकों में फैलने से रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ और पूर्व अटॉर्नी जनरल मनीष गोबिन को आज फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन FCC के मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दोनों से 2023 में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन द्वारा मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप MMG को 30 बिलियन रुपये का पेट्रोलियम कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने के मामले में पूछताछ की जा रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के कंपनी को दिया गया था। फिलहाल पूछताछ जारी है। प्रवीण

0: ना दोपहर 2:30 बजे एफसीसी मुख्यालय पहुंचे जहां एमएसएम समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उनकी ओर से वकील राउफ गुलबुल पेश हो रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि ये अंडर वार्निंग पूछताछ नहीं है। इस मामले में दो पूर्व मंत्रियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वे फिलहाल जमानत पर रिहा है। इनमें रंगानादेन पदायाची और सुदेश कालीचंद शामिल है। इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के पूर्व महानिदेशक राजीव सिरवान सिंह और मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की स्थानीय प्रतिनिधि करीना नेजियस को भी इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। और 30 बिलियन रुपये के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच जारी है। आयोग ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप को ये कॉन्ट्रैक्ट किन परिस्थितियों में मिला, जबकि शुरुआत में कंपनी 7 बोली लगाने वाली कंपनियों में शामिल नहीं थी। जांच अधिकारी उस समय के राजनीतिक नेताओं और एमएमजी के अधिकारियों के बीच हुई बैठकों के क्रम और कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने की पूरी प्रक्रिया की भी जांच कर रही है। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: 5 मई 2023 को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने ईंधन की आपूर्ति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टेंडर जारी किया। 7 जून को एसटीसी के बोर्ड ने 7 में से सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी ओक्यू ट्रेडिंग को कॉन्ट्रैक्ट देने पर मंजूरी दी। बाद में ये निर्णय रद्द कर दिया गया क्योंकि एसटीसी को मर्केंटाइल एंड मैरीटाइम ग्रुप की ओर से बिना अनुरोध यानी एक अनसॉलिसिटेड प्रस्ताव मिला। एमएमजी ने सबसे कम सप्लाई प्रीमियम, 60 दिनों का क्रेडिट और रुपए में भुगतान की पेशकश की। इस प्रस्ताव पर 29 जून को मंजूरी दी गई। ये करीब $6 लाख यानी लगभग 30 बिलियन रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किया गया बदलाव 2025 से जारी जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ये भी पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या एमएमजी के साथ हस्ताक्षर से पहले टेंडर में कोई बदलाव लाया गया या फिर आवश्यक ड्यू डिलिजेंस प्रक्रिया पूरी की गई या नहीं। इसके अलावा एमएमजी के अधिकारियों और उस समय के मंत्रियों के बीच हुए सभी समझौतों और प्रक्रियाओं पर जांच की जा रही है। इस मामले में एमएमजी की मॉरिशन शाखा की निदेशिका करीना नेसियस और एसटीसी के पूर्व महानिदेशक राजीव सरवन सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर रिहा किया गया। पूर्व मंत्री रंगानादेन पदयाची और सुदेश कालीचरण को भी गिरफ्तार करके उन पर अस्थाई आरोप लगाए गए।
0: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ गाड़ी चालकों ने सड़क के गड्ढों में पौधे लगाकर लोगों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया। उनका कहना है कि ये गड्ढे सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर देश की सड़कों की हालत पर सवार खड़े कर दिए हैं। और ब्रिटेन में रह रहे शगस के मूल निवासी नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम से अपने आत्मनिर्णय के अधिकार को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर शगस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने के फैसले को रद्द करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री से मुलाकात का भी अनुरोध किया है। ये जानकारी ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ ने प्रकाशित की है। बदलती दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इसी सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज रेजवी स्थित ओक्टावी ऑडिटोरियम में हुआ। अब डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ लड़कों का विषय नहीं रहा, लड़कियां भी इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और हुनर का दमदार प्रदर्शन कर रही हैं। लोरेटो कॉलेज काथोबोन की कई छात्राओं ने कैम्ब्रिज ए लेवल के लिए इस विषय को चुना है। अपने प्रोजेक्ट के तहत वे लकड़ी और मेटल से आकर्षक और उपयोगी मॉडल तैयार कर रही है। रचनात्मकता और तकनीकी कौशल का ये मेल छात्राओं को नई संभावनाएं दे रहा है। ज्यादा जानकारी याचना मिश्रा के साथ।
1: काथोबोन के लोरेटो कॉलेज की डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी

0: मूवी में ग्रेड 13 की लड़कियां लकड़ी काट रही हैं, मेटल को रूप दे रही हैं बारीकी के साथ। ये कैम्ब्रिज ए लेवल की परीक्षाओं का प्रोजेक्ट है। मैं बाद में आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने ये विषय चुना है। इस क्षेत्र में ज्यादातर लड़के हैं। SC 2025 की परीक्षाओं में 616 लड़कों के बदले 115 लड़कियां। ये युवतियां यही दिखाना चाहती हैं कि ये क्षेत्र हाथों से किए जाने वाले कार्यों से भी ज्यादा जरूरी है।
1: Les filles, on ne nous a pas appris à travailler avec le bois, c'était toujours couture, cuisine, mais vu que maintenant on a la...
0: लड़कियों को लकड़ी से काम करना नहीं बल्कि सिलाई और रसोई का काम सिखाया जाता है, लेकिन अब हमें मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का।
2: Je trouve que c'est une bonne opportunité qu'on nous a donné de prendre design.
0: हमें अच्छा अवसर मिला है, डिजाइन हर जगह है और ये बहुत अच्छा विषय है। समस्या को पहचानने से इसे सुलझाने तक हर प्रक्रिया बारीकी से पूरी की जाती है, विज्ञान टेक्निक और सृजन का अच्छा मिश्रण।
3: C'est quelque chose de nouveau pour elle parce que elle découvre mais en même temps avec l'introduction du NCE.
0: इनके लिए ये नया है, लेकिन जब से NCE शुरू हुआ है ग्रेड 7 से ही लड़कियां ये विषय करती हैं। ग्रेड 10 तक आते आते इनका ज्ञान काफी अच्छा होता है। HSC के स्तर पर दो परियोजनाएं हैं, कंपोनेंट 2 ग्रेड 12 में और कंपोनेंट 4 ग्रेड 13 में किया जाता है। ये समस्या ढूंढकर इसका समाधान लाती है।
3: From this, build on that pour pouvoir faire un projet pour solve ce problème-là.
0: Vastukala, engineering ya design, ye chhatraen aaj se hi apne bhavishya ko sawar rahi hain aur sabit kar rahi hain ki pratibha aur junoon ki koi seema nahi hoti.
4: मॉरिशस में हर 5 में से केवल एक माँ ही अपने बच्चे को जन्म के बाद पहले 6 महीनों तक केवल माँ का दूध पिलाती है। यह आंकड़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ की सिफारिश से काफ़ी कम है। काम पर लौटने जैसी वजहों से कई माताओं के लिए स्तनपान जारी रखना आसान नहीं होता, लेकिन कई माएँ अपने बच्चों को माँ के दूध के पोषण और सुरक्षा का लाभ मिलता रहे इसके लिए हर संभव प्रयास करती है। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। इस अवसर पर माँ के दूध के महत्व और शिशु के स्वस्थ विकास में इसकी अहम भूमिका के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। इस पर आधारित ये रिपोर्ट पेश है।
0: इस शिशु ने अभी जन्म लिया, बहुत जल्द ये अपनी माँ की गोद में होगा दूध पीने के लिए। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है हम उसे दूध पिलाने उसकी माँ के पास ले जाते हैं। बच्चा जब स्तनपान करता है तो माँ के शरीर में ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है जिससे दूध उत्पन्न होता है। सीजेरियन के मामलों में एनेस्थीसिया के कारण 6 घंटे प्रतीक्षा करते हैं। पिछले कुछ सालों से मॉरिशस में प्रथम 6 महीनों के लिए केवल स्तनपान कराने वाली माओं की संख्या 20% की रही, जबकि WHO और यूनिसेफ 50% की सिफारिश देते हैं। माओं के सामने कई बाधाएं हैं। माँ को डर लगता है कि जब वे काम पर जाएंगी तो बच्चा दूध नहीं पीना चाहेगा। सीजेरियन के मामलों में कुछ माएँ 24 घंटों तक बच्चे से दूर रहते हैं जिस वजह से स्तनपान हो ही नहीं पाता है। स्तनपान के इतने सारे फायदे माओ को प्रोत्साहित भी करते हैं।
5: Je vais allaiter mon bébé après.

0: les premiers 6 mois. Après, je pense retirer le lait, mettre dans un biberon et puis quitter avec les grands-parents.
1: Follow-up के दौरान इस पर गौर किया जाता है.
2: Quand nous retrouvons la maman dans consultation, maman a déjà les mieux, il n'est plus dans du lait.
1: दो हफ्ते बाद जब माँ अपने बच्चे के साथ आती हैं, तो माँ तब तक अपने बच्चे को अच्छे से जान जाती हैं और ठीक भी हो जाती हैं। हम उनसे बात करते हैं, समस्याओं के बारे में पूछते हैं। माएँ ज्यादातर समय स्तनपान कराने के लिए प्रेरित रहती हैं। इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय माओं को दूध पिलाने का मौका देने के लिए ढांचों को ठोस करने की जरूरत पर केंद्रित है।
3: कला केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का भी एक सशक्त जरिया है। इसी उद्देश्य के साथ पायोट सेंटर फॉर आर्टिस्टिक ट्रेनिंग ने आज ओपन डे और प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर विभिन्न कला विधाओं में प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और उनकी प्रतिभा तथा रचनात्मक कार्यों को प्रदर्शित किया गया। सदियों पुरानी भाषा, समृद्ध संस्कृति और विरासत जो आज भी मॉरिशस की पहचान का हिस्सा है, इसी विरासत को सम्मान देने के लिए भारत के उच्चायोग ने तमिलनाडु डे मनाया। समारोह में मंत्रियों, सांसदों और राजनयिक समुदाय के कई सदस्य मौजूद रहे। यह अवसर मॉरिशस में 17वीं सदी से बसे तमिल समुदाय के इतिहास, संस्कृति, संगीत और देश के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का था। सटा जानकारी करुणा लालू के साथ।
4: मॉरिशस में तमिल समुदाय की उपस्थिति 17वीं शताब्दी में डच शासन के दौरान शुरू हुई थी। तमिल समुदाय के विभिन्न लोग विभिन्न परिस्थितियों में इस द्वीप पर आए। गिरमिटिया मजदूर, दास, स्वतंत्र श्रमिक, सरकारी अधिकारी, जमींदार और व्यापारी सभी ने अपने अपने तरीके से मॉरिशस के इतिहास को और पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये विरासत आज भी संस्कृति, भाषा और संगीत के माध्यम से जीवित हैं। तमिलनाडु दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में भारतीय उच्चायुक्त ने इसी बात पर जोर दिया। महामहिम अनुराग श्रीवास्तवा ने कहा, मॉरिशस और तमिलनाडु का इतिहास पीढ़ी दर पीढ़ी जुड़ा हुआ है। ये संबंध देश के आधुनिक इतिहास से जुड़े हैं। इस धरोहर की देश की अस्मिता में गहरी छाप है। बैंकनोटों पर भी इसे देखा जा सकता है, जहाँ तमिल लिपि अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं के साथ पाई जाती है। 50 रुपए की नोट में दूरदर्शी नेता रंगानाथन श्रीनिवासन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जिनकी बुद्धिमता और दूरदर्शिता ने देश के आधार रखने में योगदान दिया। देश भर में तमिल परंपरा सजीव है और विकसित होती जा रही है। दूसरी ओर कला एवं संस्कृति मंत्री ने एकता बनाए रखने तथा तमिल पूर्वजों में मिली इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का आह्वान किया। कला एवं संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंडिया ने कहा, हम दिल से ये अपील करते हैं, एकजुट रहे, किसी भी मतभेद को अपनी धरोहर से बड़ा न होने दें। कोलातम को यूनेस्को की विरासत में शामिल करने की मांग भी अच्छी राह पर है। उल्लेखनीय है कि तमिल भाषा दुनिया भर में 77 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। 2004 में ये आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा रही है।
3: जैसे कि हम पहले बता रहे थे, बदलती दुनिया की ज़रूरतों के मुताबिक उच्च शिक्षा को कैसे तैयार किया जाए, इसी सवाल पर मॉरिशस में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें यूनिवर्सिटियों के प्रतिनिधि, शोधकर्ता और शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। उद्घाटन आज सुबह रेजवी स्थित ओक्टावियो ऑडिटोरियम में हुआ। ज़रा जानकारी करुणा लालू के साथ।
4: मॉरिशस में 51,000 से अधिक छात्र पब्लिक और प्राइवेट उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। देश में 40 से अधिक संस्थानों के साथ ये सेक्टर अब नई आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालने की प्रक्रिया में है। यूनिवर्सिटी मॉरिशस के वाइस चांसलर कवि खेडू ने कहा, इससे MOU कायम किए जाएंगे ताकि ठोस कदम उठाए जाए, ताकि यूनिवर्सिटी

0: मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर सके और संयुक्त रूप से शोध कर सके। ये संगोष्ठी मॉरिशस के लिए विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ संबंधों को मजबूत करने और उनके अनुभवों से सीखने का अवसर भी प्रदान करती है। प्रोफेसर विनयागम चिनापा ने कहा, जो सबसे जरूरी है एक प्रणाली कायम करना ताकि मॉरिशस शोध के लिए एक हब बन सके, जहां प्रशिक्षण और छात्रों के बीच आदान प्रदान हो। ये आदान प्रदान सीधे तौर पर छात्रों और युवा शोधकर्ताओं से जुड़े हैं, जिन्हें तेजी से वैश्विक होते शैक्षणिक माहौल में आगे बढ़ना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पांडिचेरी के डॉक्टर संघमित्रा मलिक ने कहा, ये मंच विभिन्न देशों, खासकर ग्लोबल साउथ देशों के लिए साथ में मिलकर विद्वजनों के बीच आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान कर रहा है। लगातार बदलते इस सेक्टर में संस्थानों को भी नई जरूरतों के अनुरूप ढलना होगा और छात्रों को आने वाले समय की शैक्षणिक और पेशेवर वास्तविकताओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना होगा। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर कविराज सुक्कू ने कहा, AI के साथ भावी यूनिवर्सिटी समान नहीं रहेंगी, खुद को इसके लिए तैयार करना चाहिए। ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी भाषा समान हो, गुणवत्ता भी, और यूनिवर्सिटी से निकलने वाले छात्र नौकरी के लिए योग्य हो। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रतिभागी अनुभवों के इस साझा मंच को ठोस कार्य योजनाओं में बदलने का प्रयास करेंगे। मकसद उच्च शिक्षा को स्थायी रूप से मजबूत करना और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करना है।
1: क्या पत्थर की मूर्तियां भी अपने भीतर इतिहास की अनकही कहानियां समेती होती है? इन्हीं कहानियों को सामने लाने की कोशिश की है मॉरिशस में ब्रिटेन के हाई कमिश्नर पर्ल ब्रमल ने अपनी नई पुस्तक में। इस पुस्तक का विमोचन वाक्वा के मॉरिशस जिमकाना क्लब में किया गया। और अपने घर से ही सुब्रमण्यन ईरुवैन पीले छोटे छोटे प्राकृतिक संसारों को आकार दे रहे हैं। प्रकृति के प्रति अपने जुनून के चलते वे प्राकृतिक पौधों से हाथों से टेरारियम तैयार करते हैं और साधारण कांच के जारों को हरियाली से भरे जीवंत लघु इकोसिस्टम में बदल देती है। विदेश में कोंगो में इबोला का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,200 हो गई है, जबकि अब तक 1,405 लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ 10 दिनों में करीब 1,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की कोशिशों के बीच वायरस अब नए इलाकों तक फैल रहा है। और भारत के कई हिस्सों में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच सबसे गंभीर स्थिति असम में बनी हुई है, जहां लगातार बारिश और बाढ़ ने लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित किया है। देश विदेश की खबरों के बारे में अब मौसम का हाल सुनते हैं।
2: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात को सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिरे रहेंगे। देर रात को और कल सुबह उत्तर पूर्व से आ रहे सक्रिय बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे, जिस वजह से उत्तरी और पूर्वी इलाकों तथा सेंट्रल प्लेटो पर रह रहकर बारिश होगी। दोपहर बाद को दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटो पर बादल घिराएंगे। हवा पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न जाने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 14 से 16, अधिकतम 23 से 25, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:41 पर, शाम को सूर्यास्त 5:51 पर होगा।

0: तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Plus.

Saint-Antoine Kanfukru Phoenix Smith, Saint-Antoine Kanfukru Phoenix Smith, 67 साल की, 67 years old की, जनाब सादिक रशीद फतिंगा, जनाब सादिक रशीद फतिंगा, जो सादिक नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके बेटे जनाब मोहम्मद मंताजिर फतिंगा के मकान सेंट अंतोन कॉन्फुक्रो फिनिक्स से निकाल कर दफनाने के लिए बिगा के कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। नंबर 55 वुकल एवेन्यू हसफील्ड हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड में 87 साल की 87 years old की श्रीमती तारा मती हीरू पैदाइशी नाम अंबाजी और जो मन का नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के डेढ़ बजे उनके घर नंबर 55 वुकल एवेन्यू हसफील्ड हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड से उठाकर दफनाने के लिए न्यू साउथ गेट की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1:30 PM। जोसेफ फ्रांसवा दुबिन स्ट्रीट वाले दे प्रेत में 76 साल के, 76 years old के श्री दयाराम गोचन जो ज्ञानदत्त नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल सपहर तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती कलावती गोचन के घर जोसेफ फ्रांसवा दुबिन स्ट्रीट वाले दे प्रेत से उठाकर दफनाने के लिए बामौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुमारो एट 3 PM। Petite cabane Candemas Pavimi, 69 साल के, 69 years old के श्री कोमल दत्त मंगो जो लाल देव नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर पचित काबान कौंदमास पावे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 9:30 PM। नंबर 29 कनाल बाथियस सेंट क्वामे 64 साल की, 64 years old की श्रीमती दियावती जोई गोपल पैदाइशी नाम शिव नारायण और जो अंबिका नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के एक बजे उनके पति श्री दीपक जयगोपाल के घर नंबर 29 कनाल बाथियस सेंट क्वा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही भोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुरांपोर में 78 साल के, 78 years old के श्री जीवन पीरू जो सत्यदेव नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के दस बजे उनके घर इंटरनेशनल स्ट्रीट रिवियर जुरांपोर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग गुडलैंड की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पिरांस रेबुशे में 90 साल के, 90 years old के श्री हरि प्रसाद चमन जो प्रसाद नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के ढाई बजे उनकी पत्नी श्रीमती मेधा चमन के घर लक्ष्मी स्ट्रीट लेस्पिरांस रेबुशे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2:30 PM। नंबर 75 शिमला सूस कथबोन में 81 साल के, 81 years old के श्री लुमन सिंह ओबिलक जो भूप नाम से ज़रा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई, उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे श्री उत्तम सिंह ओबिलक के घर नंबर 75 शिमला सूस कथबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमशन टुमारो एट 9:30 PM।
Railroad Crève-Cœur, Mi Railroad Crève-Cœur.

में 83 साल के 83 years old के श्रीचंदर कालीचरण जो लाला नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो मोका हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हेमराज कालीचरण के पिता थे कि मृत्यु हो गई है उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री यजराज कालीचरण के घर रॉयल रोड खैफकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए खैफकुआ की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमिशन टुमारो एट 11 AM तुलसी लेन यूनियन पार्क में 46 साल के 46 years old के श्री कविराज तुलसी जो विक्रम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनके अर्थ है कल दिन के डेढ़ बजे उनकी माँ श्रीमती सुकवंती तुलसी के घर तुलसी लेन यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए महेशानी रोजबैल की शमशान भूमि ले जाएगी क्रमिशन टुमारो एट 1:30 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी, यानी कि बुधवार 29 जुलाई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक सुल्फेगिनो और आसपास के इलाकों में CWA, IBL, पंपिंग स्टेशन, एक्सपुल ट्री वुडन और उनके आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और बुधवार 29 जुलाई को सुबह के 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक सुरीनाम, रियांबेल सुरीनाम, मौसलमान तानाकुदी, मौसलमान लाइमून और NHDC रियांबेल में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
3: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
4: नहीं सो सोमवार 27 जुलाई घड़ी मिला लीजिए शाम के 6:30 बज चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत किया जाता है। मैं हूँ सुमी और एक बार फिर हम आ चुके हैं आपका साथ देने के लिए अभी से लेकर रात के 9 बजे तक। जो शाम का वक्त है उम्मीद करते हैं जो टाइम है बहुत अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर 7 बजे तक जो है आप सुन पाएंगे नई सोच इस प्रोग्राम को और 7 से 9 बजे के बीच वक्त होगा दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम के लिए। चलिए जहां कहीं से भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप सभी के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी से लेकर 7 बजे तक चंद खूबसूरत गाने आपके लिए हम चलाने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं अमृत फिल्म के इस गाने के साथ।
5: You're listening to RM3 Radio Man

0: नहीं सो।
1: चलिए आपके भी जीवन की बगिया यूं ही महकते रहे चहकते रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और लाइफ में जब अपने होते हैं ना तो लाइफ की खूबसूरती और बढ़ जाती है। जब अपने होते हैं जिनके साथ अपने सुख दुख हम बांट सकते हैं, ज़िंदगी के हर एक पल को जब हम शेयर कर सकते हैं अपने अपनों के साथ, तो ज़िंदगी का रंग रूप ही बदल जाता है। तो चलिए यहाँ पर खूबसूरत गानों का सिलसिला जारी है, बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर।

0: नई सो।
1: जी हाँ, वाकई ज़िंदगी है और ज़िंदगी के ताल से ताल मिलाकर जब हम चलते हैं तब जो है ज़िंदगी ज़िंदगी लगती है, है ना। ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी में कभी कभार हम सोचते कुछ है और हो कुछ ज़्यादा है। जो भी हो हमें हर एक हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं इस गाने की ओर, जिसके साथ नई सोच ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। आप सबका साथ हमें मिला इसके लिए शुक्रिया। आगे भी साथ देते रहिएगा। इस गाने के तुरंत बाद शुरुआत होगी दिलों की आवाज़ की, जो चलेगा रात के 9 बजे तक।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज
1: वेरी गुड इवनिंग नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन आज है मंडे 27th ऑफ जुलाई घड़ी मिला लीजिए शाम के 7 बज चुके हैं और चलिए आप सबका जो फेवरेट प्रोग्राम है दिलों की आवाज इसकी शुरुआत होती है और आपके फ़ोन कॉल्स भी शुरू हो रहे हैं साथ ही आपके मैसेजेस भी यहाँ पर आ रहे हैं अभी ही से तो बहुत बहुत शुक्रिया चले दो घंटे का ये जो सफ़र है बहुत ही कमाल का होने वाला है खूबसूरत गाने तराने तो होंगे ही साथ में इंक्लूड करेंगे आपके डेडिकेशन थोड़ी देर में विल बी लाइव ऑन आवर टिकटॉक पेज ऑल्सो तो जहाँ कहीं से भी आप साथ जुड़े हुए हैं थैंक यू सो मच आपके प्यार भरे साथ के लिए और चलिए कलाकार फिल्म के इस खूबसूरत गाने के साथ आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं
0: RM3 रेडियो

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए अब आपकी जो दिल की आवाज़ें हैं वो हम तक बेशक पहुंच ही रही है आपकी फरमाइश और आपके डेडिकेशंस के ज़रिए। और अभी तो शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे में अगला जो गाना है शायद स्वेनल आपने ये पुराना गाना मुबारक हो शादी वो गाना मांगा है। आपको तो पता ही है कि इस सेगमेंट में हम पुराने गाने नहीं चलाते। तो ये जो अगला खूबसूरत सा तराना है ये हम करेंगे आशना और विकास के नाम, जिनका रिसेप्शन है आज। आप दोनों को बहुत बहुत बेस्ट विशेस और ये जो नया जीवन है आप लोगों का बहुत अच्छे से बीते। विशिंग यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, लॉट्स ऑफ टुगेदरनेस। और अगला गाना जो है आप दोनों को बेस्ट विशेस और ब्लेसिंग्स भाई श्रवण की ओर से, भाभी कृति की ओर से भी, हवा अभिनव कियान नव्या एंड सभी तिलक फैमिलीज की ओर से आप दोनों के नाम हम करते हैं।

0: चलिए अभी के लिए आपकी आवाज़ तो नहीं बल्कि आपके मैसेजेस और आपके डेडिकेशन हम तक पहुंच रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन इन योर दिलों की आवाज़।
1: दिलों की आवाज़।
0: चलिए एक बार फिर से आप सभी लवली लिसनर्स का वेलकम हम करते हैं दिलों की आवाज़। इस प्रोग्राम में आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खूबसूरत गानों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, साथ ही आपके डेडिकेशंस, आपकी फरमाइशें भी हमें मिल रहे हैं 5250-6200 पर। और इस समय जो है हमारे टिकटॉक पेज पर लाइव भी हैं, सो जितने भी फॉलोअर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप सभी का भी

वेलकम हम करते हैं एंड अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे. अगला तराना जो है तहकीकात फिल्म का ये तराना होगा, विनोद राठौड़ और आशा भोसले जी की आवाज़ों में. गुलशन जी की ओर से गाना जाता है लवली एंजल आयशा के लिए. मामा प्रभा है, सिस्टर दीक्षिता है और सभी बोला फैमिलीज़ के नाम हमारे सभी आज

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: और चलिए यहाँ पर देखते ही देखते शाम के 7:30 बजने को है। चलिए इस समय डिनर करते करते हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप सभी को बोना पीछे हमारी ओर से। और अभी तो छुट्टियों का वक्त है तो बहुत सारे लोग जो है बच्चों के साथ अच्छा समय बिता रहे होंगे। स्कूल कॉलेजेस के हॉलीडेज चल रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे पेरेंट्स भी जो है छुट्टियां लेकर बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए भी थैंक यू सो मच। सो इस वक्त हम लाइव है हमारे टिकटॉक पेज पर, रेडियो मनोरंजन के पेज पर। संगीता सुकारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पिया जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक है। जितेन दुलुआ जी कैसे हैं, नमस्ते जी, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। शवि, हाय शवि, आपका भी वेलकम है। अलीशा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: You're listening to RM3 Radio Manoranjan।
1: जी हाँ, ये है रेडियो मनोरंजन और रेडियो मनोरंजन पर आपका साथ हमेशा मिलता है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबरीना जी आप भी साथ दे रही है। अगला गाना एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग जाता है रॉक स्टार साइलेश के लिए अलीशा की ओर से। ऑलराइट सबरीना जी, अगला गाना आपके लिए भी हम करते हैं। थैंक यू शवि हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। रुमिता गुजा जी कैसी है आप, नमस्ते आपको भी। अगला गाना रुमिता जी आपकी ओर से सभी दशरथ परिवार और सभी गुजा परिवारों के नाम। ओके महेश जी शुक्रिया साथ देने के लिए। गाना जाता है आपकी वाइफ कीर्ति के लिए, आपकी बेटी है केशा, साथ में बेटा है कविश और कियान और पूरे फैमिली के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। डीजे नेल्सन कैसे हैं आप, ठीक है ना। ओ मोस्ट वेलकम शवि और रुमिता जी, थैंक यू इतने सारे हार्ट्स के लिए। सुबी जी कैसी है आप, नमस्ते आपको भी। और हाँ वाकई में गर्मी है आज मौसम इस तरह से बदलता है कि पता ही नहीं चलता। अभी कुछ दिनों पहले शाम के वक्त काफ़ी ठंड हुआ करती थी और अब तो दिन हो या रात हो गर्मी इतनी बढ़ गई है कि क्या कहें। तो चले इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और सागर जी हमारे साथ सुरीनाम से साथ दे रहे हैं। दीपक जी अगला गाना आपकी ओर से जाता है सभी के लिए। अगले आप इस समय पोर्ट लुइस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कवि किशन जी आपका भी वेलकम हम करते हैं, थैंक यू सो मच। और ये खूबसूरत सा तराना आप सभी के लिए चल पड़ा। फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म का ये गाना है, तेरे दर पर सनम चले आए, कुमार सानू जी की आवाज़ में।

चले तैयब बोला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी यही गाना आपकी ओर से जाता है मेधा के नाम और आप लोग वाक्वा सुल्फेरिनो वाक्वा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।

0: चलिए अपने रूट जाते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि जिंदगी रूट गई है ना।
1: दिलों की आवाज की आवाज।
0: चलिए जितने भी आपके अपने रूठे हैं सभी जो नाराजगी है वो दूर हो जाए और सब मिल जाए, ऐसी दुआ हम करते हैं। और बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। अगला गाना सुदेवी जी आपके नाम हम करते हैं, आप वाकवा से इस समय हमारे साथ जुड़ी है। गुड इवनिंग आपके मैसेज के लिए। गाना जाता है आपकी दीदी ललिता के नाम और सभी कुशल फैमिली के लिए जो इस समय ट्रियोले से हमारे साथ कनेक्टेड है। यह गाना जाएगा आत्माराम भैया के लिए, दीदी सुनीता शोभा देवीना मालिंगा से सभी साथ दे रहे हैं। वी हैव अनुषा किरण टू ऑल राम रतन परिवार। ये गाना जाता है चलते चलते फिल्म का तराना, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना। ऐसे इस गाने से अभिजीत जी की याद आ गई, सैटरडे को क्या माइंड ब्लोइंग कॉन्सर्ट था उनका। ही वॉज वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो एंड वेरी लाइवली ऑल्सो। और चलिए अगले गाने के साथ आप सभी का नाम हम जोड़ते हैं। जेनिता नमा जो पहली बार हमारे साथ टिकटॉक लाइव पर जुड़ी है, थैंक यू फॉर एंजॉइंग द शो। गीता हरी जी कैसी है आप, ठीक हैं? आपने कहा हम कहाँ से बोल रहे हैं, तो इस समय हम रेडियो मनोरंजन से बोल रहे हैं।

RM3 रेडियो मनोरंजन के संदेश सदा सिंह जी नमस्ते, कैसे हैं आप? सुभी जी बिल्कुल आपके गाने को हम फ्राइडे आपकी पसंद इस प्रोग्राम में ज़रूर चलाएंगे। और यहाँ पर अगला गाना जानेश जी आपके नाम करते हैं। श्यामा जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यहाँ पर यही गाना गीता जरी जी आपके लिए भी। हाय खुशी कैसी हैं आप? और चलिए इतने सारे प्यार इतने सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ गीता हरी जी हम मॉरिशस से ही बोल रहे हैं, ये MBC का ही रेडियो है, रेडियो मनोरंजन। MBC में रेडियो की बात करें तो वी हैव रेडियो मनोरंजन, वी हैव रेडियो मॉरिशस, वी हैव रेडियो मस्ती। सो ये है रेडियो मनोरंजन इस समय। ओके और परी जी ये गाना आपके लिए भी। और इस समय कुर्सी जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत हम करते हैं। आप फिर वी हैव सुभाष मोती जी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। और चलिए यही तराना जाता है यहाँ पर हबी नीलेश के लिए, विष्टी की ओर से सभी बाबूलाल परिवार के नाम। और पत्रिचो फैमिली के लिए भी। सनवीर संध्या जी कैसी हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक है। तो चलिए गाना चल पड़ा अभिजीत जी और साथियों की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज़
1: जी हाँ, हम यहाँ पर बिल्कुल सुन रहे हैं आपके फरमाइशों का और आपके डेडिकेशंस का इन या दिलों की आवाज़ ऑन रेडियो मनोरंजन। और यहाँ पर शाम के 7:50 ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर बादवाग विदेशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला गाना आपके नाम हम करते हैं बादवाग जी और सभी विदेशी फैमिलीज के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। ओके पिया जी, अगला जो तराना है हीना मूवी का गाना है, लता जी, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाज़ों में आपके नाम हम करेंगे। और यहाँ पर यही गाना प्रेमिला जी आपके लिए भी जाता है। माधुरी जी आपका भी वेलकम हम करते हैं, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। गीता हरी जी थैंक यू सो मच, आप फ्रांस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विदुर जी आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर सूट जी आप भी फ्रांस से हमारे साथ कनेक्टेड है। और बहुत सारे हमारे जो फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के, फ्रांस हो, सुरीनाम हो, फिजी से इस समय जैसे कि मर्विन जी हमारे साथ हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ पर एमबी आप भी जुड़ चुके हैं, चलिए अच्छा लगता है कि अभी के टाइम में ऐसा होता है ना कि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, कभी कभार हम अपनों को समय ही नहीं दे पाते। और देखिए यहाँ पर हमारे कितने सारे फॉलोअर्स जो है हमारे साथ कनेक्टेड है। इतना प्यार आपका मिल रहा है हमें, इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी अलविदा ना कहना, ये आप मुझे बोल रही है ना कहने के लिए या इस मूवी का गाना आप सुनना चाहती है परी जी? रविंद्र पेंटिया जी कैसे हैं आप? हेलो आपको भी। दिल है नादान, दिल है नादान कौन सी फिल्म का गाना है अगर आप बताएंगे तो हम इसे ज़रूर चलाएंगे। अभी के लिए हिना फिल्म का ये गाना चल पड़ा है। खतीबा जी इस गाने को आपके नाम भी हम करते हैं, थैंक यू सो मच। शर्मिला बुधन जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीता देवी जी थैंक यू। सुंदर जी आप भी हमारा साथ दे रहे हैं। और इस समय रोड्रिक्स से सनशाइन हमारे साथ जुड़ी है।

0: दिलों की आवाज, की आवाज,
1: की आवाज। चलिए ऐसे भी देर करना अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। किसी भी काम को करना है तो समय पर करना ज्यादा अच्छा होता है। और चलिए इस समय गिरीश हरलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार सानू का गाना ये सुनना चाहते हैं वास्तव मूवी से। चलिए गिरीश जी, ये गाना आपके नाम हम करते हैं और सभी हरलाल परिवार के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। शर्मिला बुदन जी, अगला गाना आपके लिए। थनु सुंदर जी, आपका भी स्वागत हम करते हैं। रीता देवी नमः, कैसी है आप, ठीक है ना। बबीता सुब्रन जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर मैसेज। और यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अजय लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। इस अगले तराने को आपके लिए भी हम चलाएंगे। कभी यादों में आऊँ, माय फेवरेट सॉन्ग प्रेमिला जी, पर ये कौन सी मूवी का गाना है अगर आप हमें बताएंगे तो हम आपके लिए

चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। परी जी चलिए कोशिश करेंगे आपके लिए भी कोई खूबसूरत सा गाना चलाने की। दिनेश जी नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज पिर्थिया जी कैसे हैं आप? ऐसे आप सभी को तो पता ही है दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में पुराने गाने हम नहीं चलाते हैं। पुराने गाने अगर आप सुनना पसंद करते हैं सो आप सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में ज़रूर साथ दे सकते हैं। सुहाना सफ़र ये जो प्रोग्राम है चलता है दोपहर के 12 बजे से हर रोज़ रेडियो मनोरंजन पर। कठपुतली से इस समय वेदना हमारे साथ जुड़ी हुई है और अगला गाना आपके नाम भी हम करेंगे। प्रेमिला जी यही गाना आपके लिए भी। माधुरी जी आज हमारा लाइव चल रहा है, कल की बात कल करेंगे। बिल्कुल कल भी मौका मिला तो सुहाना सफ़र प्रोग्राम में हम लाइव ज़रूर जुड़ेंगे। और राइट, और चलिए यहाँ पर वास्तव फिल्म का ये तराना चल पड़ा है। आप सभी के नाम विशाल जी इटली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिला 29 थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। MB आप भी जुड़े हैं। हेलो धीरज जी,

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़
1: चले दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में ये जो खूबसूरत गानों का सिलसिला है और यहाँ पर इसे आगे ले जाते हैं और रोमांटिक गानों का ये जो सिलसिला है इसमें इस अगले गाने को जोड़ते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना सनशाइन आपके नाम जिस समय रोड्रिक से हमारे साथ कनेक्टेड है धीरज जी यही गाना आपके लिए भी हम कुमारन जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए नसीम शेख है वी हैव चमिंदा जी यूजर 9906 अगला गाना आपके और आपकी वाइफ के लिए ऐसे जो गाना आपने रिक्वेस्ट किया हमें समझ में नहीं आया आप क्या लिखना चाह रहे थे इस समय सुरीनाम से MH जोगलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुर्सी जी गानों को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समरीता जी आपने अनीना सॉन्ग लिखा है मुझे समझ में नहीं आया शायद आप आईना मूवी का गाना कह रहे हैं उषा जी अगला गाना आपके हबी रुमेश के नाम ओके ऋषिका जी कैसी है आप वीर सिंह जी नमस्ते समरीता जी आपको भी हैव फरोजिया जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है हमारे इस लाइव को रिपोस्ट करने के लिए और शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष हाय हर्ष कैसे हैं आप ज्योति गुली थैंक यू फॉर लाइकिंग द प्रोग्राम ऐसे हम भी एक हर्ष को जानते हैं क्या आप वही हैं आबिद रेहान जी कैसे हैं आप आबिद रेहान जी वीर ज़ारा का कोई गाना ऑलराइट मौका मिलेगा तो ज़रूर चलाएंगे और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हमारे इस लाइव को शेयर कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चलिए ये गाना चल पड़ा आप सभी के नाम राम तेरी गंगा मैली फिल्म से लिया गया लता जी की आवाज़ में लता जी के साथ साथ और साथियों की आवाज़ों में

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर खूबसूरत गाने तो यहाँ चल ही रहे हैं, रोमांटिक तराने भी यहाँ पर आपके नाम हम कर रहे हैं। और ऐसे में याराना फिल्म का ये जो अगला गाना है, मेरा पिया घर आया, ये खास कर जाता है अनीता जी आपके नाम, आपकी ओर से आपके सभी फ्रेंड्स के लिए, आपके सभी फैमिलीज के लिए, रेडियो मनोरंजन की पूरी टीम के लिए भी। थैंक यू सो मच अनीता जी। और इस समय फिनिक्स से रिहाना हमारे साथ जुड़ी हुई है, यही गाना रिहाना जी आपके लिए भी हम करते हैं। अनिल रामदवार जी, एक गाना आपके लिए, बिल्कुल ये गाना आपके लिए भी। प्रीति जी, थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेज, ये तराना आपके लिए भी हम करेंगे। हेलो संजीव जी, आकाश जी, आपने कहा कि अभिजीत का कोई गाना, प्रीति जी थोड़ी देर में अभिजीत का एक गाना हम ज़रूर चलाएंगे। चट्टू राणा जी, थैंक यू हमारे इस लाइव को शेयर करने के लिए। समृता जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द लाइव। अनिल रामदेवा जी, आपने कहा छुपाना भी नहीं आता, बाजीगर फिल्म का ये गाना, इसे भी हम थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। संजय जी, अगला गाना आपकी ओर से, आपके वाइफ सोनम के नाम भी।

खासकर आपके ही के लिए था और चले दिलों की आवाज ये प्रोग्राम रेडियो मनोरंजन पर इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं किसी ने कहा अभिजीत जी का गाना सुनने को मन कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अभिजीत का ही गाना सुनने को मन कर रहा है ऐसा कहा प्रीति जी ने चले प्रीति जी अगला गाना आपके नाम हम करते हैं तौबा तुम्हारे ये इशारे चलते चलते फिल्म का यही गाना परी आपके लिए भी यही गाना अलेक्जेंडर आपके लिए भी जो इस समय रशिया से हमारे साथ कनेक्टेड है विनय गुप्ता जी आपने कहा ऐसा देश है मेरा थोड़ी देर में हम इसे ज़रूर चलाएंगे क्योंकि यही गाना किसी और ने भी मांगा है जेविना जी थैंक यू प्लीज़ इफ़ पॉसिबल कौन सा गाना जेविना जी ओके ये रात खुश नसीब है ओके हमने नोट कर लिया है मौका मिला तो ज़रूर शामिल करेंगे प्रोग्राम में थैंक यू रॉय राजकिशोर जी इस समय बुबासन से हमारे साथ जुड़े हैं गुड इवनिंग आपको भी राजकिशोर जी उम्मीद करते हैं प्रोग्राम को आप पसंद कर रहे होंगे हेलो त्रिनेश यही गाना आपके लिए भी एंड दिस लवली सॉन्ग गोज टू राजेश एंड माया आप दोनों के नाम भी वीरू थैंक यू वीरू कैसे हैं आप ठीक तो है और अनिल रामदेवा जी प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग कौन सा गाना था अनिल जी कभी कभार कुछ मैसेजेस जो है मिस हो जाते हैं प्लीज़ याद दिलाइए कौन सा गाना आपने कहा था राज कपूर का कोई गाना ऐसे राजकिशोर जी इस प्रोग्राम में पुराने गाने हम नहीं चलाते हैं सो अगला गाना आपके नाम हम करते हैं हाय क्रिश कैसे हैं आप और चलिए इस समय सूरज शर्मा जी त्रियोले से हमारा साथ दे रहे हैं ये गाना सभी सजादा परिवार के नाम हम करते हैं

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए रेडियो मनोरंजन पर यह है दिलों की आवाज और अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर बाजीगर फिल्म का ये जो तराना है जाएगा जीएस आपके नाम, शायद आप ही ने इस गाने की फरमाइश की थी ना, छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता। तो चलिए गाना आपके लिए हम करते हैं लेडी जागुआ आयशा, ये तराना आपके लिए भी। और इस समय प्यासाद मोहन जी त्रिनिदाद टोबैगो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये गाना आपके लिए भी। ओके त्रिनेश, आपने भी फरमाइश की है फॉर समवन स्पेशल, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर चलाऊंगी, ठीक है। और यादव अमरीश जी कैसे हैं आप, नमस्ते आपको भी। रुदने जी कैसे हैं आप, यही गाना आपके लिए भी हम करेंगे। और इस समय जो है राफिक मोहित जी तयाक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगला तराना राफिक जी आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच। राजू यादव जी कैसे हैं आप, सावित्री सिंह जी इस समय नीदरलैंड से हमारा साथ दे रही हैं। और किसी ने यहाँ पर यादें फिल्म का गाना जो है इसकी रिक्वेस्ट की है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे, बॉर्डर फिल्म का गाना भी, ओके। और चलिए यहाँ पर यही तराना आपके लिए भी करते हैं कल्याणी जी।
2: You're listening to RM3 Radio Man.

0: हुए नहीं छुपते, होता है कभी कभार दिल की बात बोल देनी चाहिए, और जो दिल की बात होती है वो हम अपनों से ही तो कहते हैं, है ना।
1: दिलों की आवाज, की आवाज।
0: चलिए यहाँ पर दिलों की आवाज़ और कुछ लवली रोमांटिक तराने आप ही की फरमाइश पर आपके लिए हम चला रहे हैं। लवली जी, आपने जो गाना मांगा है ताजमहल फिल्म का, ऐसे पुरानी फिल्मों के गाने हम यहाँ नहीं चलाते हैं, मतलब इस प्रोग्राम में नहीं चलाते हैं। सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में आप बेशक हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर, वहाँ पर आप सुन सकते हैं यही गाना तबरेज़ खान जी आपके लिए। और अगला जो तराना है वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत है, रेहान ने इस गाने की फरमाइश की थी और एक हमारे फॉलोअर ने इस गाने की फरमाइश की थी, तो ये गाना आपके लिए भी। माया रामदोस जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूर्यन, ये गाना आपकी ओर से आपकी लव सरोजा के लिए। शिखर जी, थैंक यू सो मच गानों के सिलेक्शन को पसंद करने के लिए। ईशा जी, हम लोग जाने वाले हैं दीदी, ओह ओके, एलओसी का कोई गाना आप मांग रही है, ओके हम कोशिश करेंगे। जाने वाले और ओके ओके ओके, मुझे लगा कि एलओसी मूवी का गाना मांग रही है, सॉरी फॉर दैट। हाय रागिनी जी, कैसी है आप, ठीक है। प्रतिमा दुखित राम जी, अगला गाना आपके नाम आपके हस्बैंड कृष्ण के लिए। मामा बसंती है सभी दुखित राम परिवार और सभी राम शरण फैमिलीज के लिए। थैंक यू परी। देखिए, आप लोगों के साथ हंसते मुस्कुराते इन गानों को चलाते चलाते 2 घंटे का सफ़र कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता। सुनील जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। अगला गाना आपके लिए भी हम करेंगे। लैला जी, आप भी जुड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। रोजीदा दर्शन जी, कैसी है आप, हाय किंग। समा फजा, ओके, बाजीगर का गाना आपको अच्छा लगा, चलिए उम्मीद करते हैं ये गाना भी आपको पसंद आएगा।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: और चलिए अगला जो तराना है ये बस चलने ही वाला है। आईना फिल्म के इस गाने की जो है कब से वेट की जा रही थी जेनीता और संरिता जी की ओर से, जेबीना और संरिता जी आप दोनों के नाम ये गाना, काफ़ी समय से आप इस गाने का इंतज़ार कर रही थी। तो चलिए गाना बस चलने ही वाला है आईना फिल्म का। ये रात खुश नसीब है लता जी की आवाज़ में और उन सभी के नाम जो इस गाने को पसंद करते हैं। अभी जी आपने कहा जब कोई बात बिगड़ जाए आपकी वाइफ वर्षा के नाम, मौका मिला तो हम ज़रूर चलाएंगे। अगला गाना आशना आशा नारायणन की ओर से संजय के लिए, थैंक यू सुबी जी। और यही गाना जो है हम करेंगे आप सभी

लवली फॉलोअर्स के नाम जो इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है. हेलो लीना जी, कैसी है आप? हाय स्वीटी जी. और नेक्स्ट गाना लीना जी आपकी ओर से आपके हस्बैंड विनय के नाम, बेटा कनिष्क के लिए और बेटी अहाना के लिए. और यही गाना जाएगा विनय गुप्ता जी आपके नाम भी. और प्रवीण जी नमस्ते, कैसे आप प्रवीण जी? रिया बुदन जी नमस्ते आपको भी. अवि ओके, डेविन्स कलेक्शन कैसे हैं आप? अगला गाना आपकी ओर से आपके डियरेस्ट सिस्टर अंजू सुमारा के सुमारू के नाम जो इस समय ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ कनेक्टेड है शायद, है ना. एतान संधू जी कैसे हैं? अविनाश जी यही गाना आपके लिए भी.

और चलिए दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम में अगला गाना जो है हम त्रिनेश आपके नाम करते हैं और हमारा इसी के साथ जो है लाइव भी जो है टिकटॉक का वो भी समाप्त हो गया है। आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए शुक्रिया आयशा जी। यही गाना आपके लिए भी हम करेंगे और प्यार किया तो डरना क्या फिल्म का ये तराना है कमाल खान और साथियों की आवाज़ों में। ऑब्वियसली जो लवली सा गाना है पिक्चराइज हुआ था सलमान खान पर।

0: चलिए इसी के साथ दिलों की आवाज़ ये प्रोग्राम जो है लगभग ख़त्म होने को चला। आप सभी लवली लिसनर्स का साथ हमें मिला शाम के 6:30 से अभी तक, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते ये तराना आप सभी के नाम हम करते हैं और साथ ही हमारे टिकटॉक के जितने फॉलोअर्स हमारे साथ जुड़े रहे, आप सभी के लिए भी 9:00 जो है रेडियो मॉरिशस से सीधा प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन पाएंगे। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल दोपहर को 12 से 2 बजे के बीच सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में, और फिर सवेरे भी यानी कि भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में भी। तो ऐसे ही साथ देते रहिएगा रेडियो मनोरंजन पर। नमस्कार आप सभी को, गुड नाइट हमारी ओर से, अपना ख्याल रखिए और MBC रेडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए।
1: You're listening to RM3 Radio Man.

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

0: मिस्ट्री की धमाल भोजपुरी तड़का आज की रात किरण संगे।
1: आज की रात 27 जुलाई 2026 है। इस सप्ताह के पहला दिन सोमवार और रात के 9:03 होलबा और हम किरण आप सब कोई के करजोर नमस्ते करत हैं और आप सब कोई के इस कार्यक्रम में स्वागत करत हैं। अभी से रात के 11 बजे तक हमेशा की तरह हमर और आपके साथ रही और आप बहुत प्यार के साथ बहुत बेसब्री के साथ ई प्रोग्राम के इंतज़ार करेला। ई बात हम बहुत अच्छा से जानीला। तो चला आपके फरमाइश सुने के बखत चला बा और ई जोन प्लेलिस्ट बनाल बा ओके बदलते जाए के भी समय चला बा। पहला गीत आप सब कोई के नाम श्वेता बाबूलाल के आवाज़ में ओ बलमा।

रात के 9:10 होल बा और आप लोग के फोन कॉल्स आई के शुरू हो गल बा जो अगला गीत चली रंभा राम तोहल के आवाज में जुबीदा लुतु लेके जाए बहुत ही मशहूर गीत जो खाली मॉरिशस में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सब कोई द्वारा पसंद करल जाला। ये गीत भाई अबू और फैज असलम अयाज जहीरा रईस कालाचोटी उनकर दोस्त आपी उनकर पत्नी और साथ में ख़ास तौर पर अपन भगीनी रकीबा के नाम कर था वन और आप रकीबा के बहुत बहुत दुआ देवा था वह ताकि उनकर स्वास्थ्य बहुत जल्द अच्छा हो वापस लौट जाए वो अच्छा हो जायन और मामू के दुआ था हमेशा भगीनी के साथ रहबे करेला। उधर एगो बहिन हवन जे हमेशा अपन बहिन खातिर गीत मांगेलन और आप हवा सुनीता गांगोब से आप अपन बहिन विमाला के नाम अगला गीत कर रहा था वह जे कोंगोमा से हवन। तो चला जा रंभा राम तोहल के आवाज़ में ये मज़ेदार गीत आप सब कोई के नाम।

9:18 होलबा और आप लोग के फोन कॉल्स आते बा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जन गीत चली, दादा के कहानी सुना, दादी के कहानी। ये गीत खास तौर पर शीला जी मांगत हवन। ये गीत खास तौर पर आज आप आंसले के नाम करत हवा, साथ में सुरेन अपन पति और अपन सब लड़का लोग के नाम। शीला जी के ओर से

हांसले के नाम और सब लड़का लोग के नाम, उनका पति और पूरा परिवार के नाम, दादा की कहानी और आपके साथ साथ जितना भी हमने के सुने होला लोग के ई मनपसंद गीत है, कहे कि ई गीत के फरमाइश अक्सर रहती रहेला, तो आप सब कोई के नाम ई अगला गीत।

0: दादा के कहानी सुना और दादी के कहानी, ये कहानी कब खत्म हो होला नहीं है। आज देखब जाता जुलाई महीना के आखिरी लेन दी है और ये एगो लंबा महीना रहा, लेकिन देखते देखते देखा थे जा कि इस सातवां महीना भी अब खत्म हो के चला बा। आठवां महीना जैसे चढ़ल तो समझ ल अब हमनी साल के अंत तक जाते जा और तैयारी शुरू हो जाए। ढेर चीज के तैयारी, आवे होला परब की तैयारी, नवा बरिस के स्वागत की तैयारी, और ऐसन में देखा थे जा कि समय जोन बा वो बहुत जल्दी जल्दी बितले जाता। आज के जो दिन रहल भजेर के लेंदी के जो दिन रहेला काफ़ी कठिन रहेला शुरू करे के, लेकिन देखते देखते देखा रात के 9:00 हो गल और जैसे दिन शुरू होल तो ओके ख़त्म होवे में ढेर समय नहीं लगेला। वैसे ही जीवन में आशा और निराशा भी आवेला, जहाँ पर थोड़ा समय खातिर हंसी खुशी आवेला तो दूसरा समय देखबा तो एगो उदासी छा जाला, लेकिन फिर ओकर बाद हंसी खुशी के माहौल, हंसी खुशी के समय फिर से चलावेला। और कब्बो इन्हें चाहे सोचे के कि जौन समय चला था वो हमेशा चली, कुछ भी हमेशा खातिर नहीं है इस दुनिया में, सब कुछ आवता जात बा, आवता जात बा। तो ऐसे में आपके फ़ोन कॉल्स भी आते जाते बा और अगला गीत जौन चली बहाल गौरी के आवाज़ में। ये गीत की फरमाइश कर ले हवन पितों से अमृता गणेश जी, और आप ये गीत अपन बेटी पूनम के नाम करत हवा, साथ में सोनिया और परी, और आपके बेटी, आपके बेटा और बहू मीनाक्षी और विशान के नाम भी। अमृता गणेश जी के पसंद के ये गीत बहाल गौरी के आवाज़ में आप सबको के नाम जे बहाल गौरी के फान हवा जा।
1: चन चन चन चन न न न।

0: संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: इबकत हमने के सबसे जस्ती नाना नानी दादा दादी लोग सुने लंजा। तो अगला जो गीत चलाता गिरीश रूपचंद के आवाज में, रोमांटिक नाना नानी। हमर नाना राजेश खाना, हमर नानी हेमा मालिनी, ये हमने बोला था। ये गिरीश रूपचंद बोला थवन और ये गीत के फरमाइश कर थवन तेहूश के शांति जी। शांति जी हमेशा के तरह दागोचिया के मराठी परिवार के नाम कर थवन और अपदागोचिया के उनकर भगीना ओम और सब सुने हो रहा के नाम।

जिसे सुनला अगला जुन गीत चलता वह कौन ची लेके आईला कौन ची लेके जाइबा। और ये गीत विनोद सिवदत्त के आवाज में विनोद सिवदत्त के फरमाइश ढेर आलबा। और पहला फरमाइश था आलबा ललिता जी के ओर से त्रियोले से आप ये गीत चलावे चाहता हुआ अपन सब बहिनजन के नाम सुदेवी ज्ञानी प्रभावती छोटी माला राम जावन और साथ में अपन भाई लोग के नाम हरीश और आत्माराम। उधर आपके भाई आत्माराम बेलिया से यही गीत आपके नाम करत हवन आपके साथ साथ ललिता जी। ये गीत सुदेवी छोटी प्रभावती के भी नाम। तो चला विनोद सिवदत्त के आवाज़ में ये गीत ललिता और आत्माराम जी के फरमाइश पर और आप सब कोई के नाम।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर आरएम फ्री मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

रात के अभी 10 बजे में 15 मिनट कमती बा और आप लोग के फोन भारी संख्या में आवता, बहुत बहुत धन्यवाद। जो नगला गीत चली ये गीत के मांग करत हवन साजिद जे रोसिल से हवन, और हमेशा की तरह आप ये गीत अपन दोस्त सरोवर जे कनाडा में हवन उनकर नाम करत हवा, और जे कोई भी अभी हमने के सुनत हवा जा आप सब कोई के नाम, और साजिद जी बोलत हवन कि खाली ई बरिस के महीना ही जो जुलाई महीना में खाली वही नहीं ख़त्म हुआ था, बल्कि एकर संगे संगे देखत है जा कि सर्दी के जो मौसम बा वो भी बुझता ख़त्म हो गल बा, थोड़ा बहुत ठंडा करा था फिर से गर्म भी करा था, कितने इलाका में रात दिन दोनों गर्म करा था और फिर से एसी लगावे के बदौलत चला बा। तो ये एगो इशारा है कि अब सर्दी के मौसम ख़त्म हो बा, फजर के घाम भी साजिद बोलत हवन 15 मिनट आगे उगे के शुरू हो गल बा, और सांझ के भी थोड़ा देरी से घाम जाता सुते, तो ये सब इशारा है कि अब गर्मी के भी मौसम चला, और गर्मी के मौसम के मतलब है सालांत के इशारा। तो वक्त कोई खातिर नहीं रुकेला, मौसम भी नहीं रुकेला, समय नहीं रुकेला, ऐसन में चला रंभा राम दोहल के आवाज़ में ये अगला गीत जो साजिद जी के पसंद के है, लाई लाई लाई लाई बलम तेरे लिए फूल ले ले आए। और ये गीत साजिद जी जितना कोई भी हमने के सुना था वजह सब कोई के नाम करा था वन।

रंभा रामधौल के आवाज के बाद जो नगला गीत चली और एगो मशहूर आवाज एगो जाना माना कलाकारा पूर्णिमा फोखीरा के आवाज में इनकर गीत के फरमाइश काफी अलबा। पहला तो गौबे के रतन गीत अपन पत्नी करुणा के नाम करत हवन, साथ में जितना कोई भी अभी हमने के सुनत हवा जाओ सब कोई के नाम। उधर बुंतिया के जानवी हमने के ई बखत सुनत हवन और जानवी के नाम भी ई अगला गीत पिया परदेस। और फिर सेजिया मिल के चाची शांता शांता सुकारी ई गीत के फरमाइश करत हवन अपन पूरा परिवार पूरा सुकारी परिवार के नाम और विशेष तौर पर अपन बेटा रवीन, बहू किरण, बेटा सुदेश, संजना, प्रवेश, अशोक, सुजीत और पूरा सुखारी परिवार के नाम। और चाची बोलत हवन उनकर स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं बा, थोड़ा भींज गईलन तो जब ऐसा मौसम करेला जहाँ थोड़ा ठंडा गर्म करता तो सावधानी चाहिए और जस्ती बरते के निशक बजाने कब एगो ठंड आपके लग जाए और ये एगो बहाना हो जाए फिर खोखी सर्दी ये सब धर ले तो बहुत मुश्किल हो जाला कुछ नहीं सुहाई। तो चला शांता सुखारी जानवी बुंतिया के और गौबे के रतन के नाम ये अगला गीत।

रात के 10 बज के आधा होल बा और आप लोग ई बखत तक साथ देवत हो बचा और अभी से 11 बजे तक और आधा घंटा तक साथ रह बचा ई खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से बहुत कोई ई बखत आराम करते हुए हम ये सुनता हुआ तो आप में से ढेर कोई अभी परिवार संगे बहुत ही सुंदर माहौल में हो बचा ढेर जगह अभी चौठारी के जो रात्रि के माहौल बा उस जल बा ढेर जगह अभी जन्मदिन चला था तो जिकर भी आज जन्मदिन बा जिकर भी काल जन्मदिन रहल जिकर भी जन्मदिन काल बा आप सब कोई के जन्मदिन के बहुत बहुत शुभकामना बहुत बहुत बधाई। और आप सब खातिर बसंत सुपोल के आवाज़ में इस सुंदर गीत जिकर में चर्चा करा गल बा मिठाई के चर्चा करा गल बा मोमबत्ती के और हैप्पी बर्थडे आप सब कोई के।

0: जीवन संगे। जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio. Radio.
1: भोजपुरी तड़का किरण संगे. जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ.

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। जी हाँ, फिर से आ गए हैं आप लोगों का साथ देने के लिए इस खूबसूरत सी सफ़र में जिसका नाम है सुनहरे पल ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल दोस्तों, हम जैसे कि आपको पता है गणेशा, आ जाते हैं खूबसूरत मीठे मीठे पुराने गीतों के साथ, जो पुराने बॉलीवुड के गीतों के खजाने से निकाल के लाए हैं। तो इस एक घंटे के सफ़र में कुछ ऐसे गिने चुने नगमे हम पेश करने वाले हैं जो सीधे सिर्फ आपके दिल तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए आराम से बैठ जाइए और हमारा साथ जी सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

आज हम सजाएंगे गीतों की एक ऐसी महफिल जहां हर सुर एक नई याद जगाएगा। रेडियो मॉरिशस पर सुनहरे पल का आनंद लीजिए। पुरानी कैसेट, पुराना रेडियो और पुराने गीत, याद आ गया? हाँ जी, याद आ गया ना वो जमाना। तो चलिए फिर से जीते हैं वो लम्हे सुनहरे पल के साथ। बॉलीवुड के अमर गीत और उनकी मिठास लेकर हम हाजिर हैं। ये है सुनहरे पल, जहाँ हर गीत दिल से जुड़ जाती है।

0: दोस्तों, जिंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा सा वक्त निकालिए और खो जाइए उन गीतों में जो हमेशा दिल के करीब रहे हैं। बिल्कुल, स्वागत तो हमने आपका कर लिया। आपके मनपसंद गाने हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ठंडी ठंडी हवा का झोंका चल रहा है और आपके मनपसंद गीत ऑन रेडियो मॉरिशस। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, और क्या चाहिए, हम तो चाहते हैं कि आप बस इन खूबसूरत गीतों में खो जाइए और हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: सुनो और गौर से सुनो, अरे पहले तालियां तो बजाओ। आज रात का मैं आखिरी गाना गा रहा हूँ और गाने में ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया में खुश रहना हो तो मानो मेरी बात।

कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, बिल्कुल कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती है मेरी जान। आज उन्हीं आवाज़ों और गीतों के साथ हम लेकर आए हैं यादों भरी एक खूबसूरत शाम। गीत जो कभी आपकी मोहब्बत का हिस्सा थे, गीत जो कभी आपके सफ़र के साथी थे, आज फिर सुनेंगे उन्हें, आपके मनपसंद गीत सुनहरे पल में ऑन रेडियो मॉरिशस।

रेडियो मॉरिशस पर शुरू तो हो चुका है यादों का सिलसिला। हर गीत के साथ एक नई कहानी और एक नया एहसास। ये है आपका अपना सुनहरे पल किनिशा के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस। बिल्कुल जी, पुराने बॉलीवुड गीतों की महक और यादों की खुशबू लेकर हम आ जाते हैं, तो बस तैयार रहिए हमारा साथ देने के लिए एक सुहाने संगीतमय सफर के लिए।

खूबसूरत गानों के जरिए जब आप अपने उन खूबसूरत यादों को याद कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं, आपको पता है हमें कितनी खुशी होती है। हाँ जी दोस्त, वाकई में जब भी हम आ जाते हैं, ये यादों का खजाना आपका खुल जाता है तो हमारे दिल को खुशी मिलती है, क्योंकि यादें कुछ ऐसे होते हैं मीठे मीठे प्यारे प्यारे जो हमेशा आप अपने दिल के किसी कोने में उसको सजा के और दबा के भी रखते हैं। तो चलिए उन्हीं यादों के नाम ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए।

तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू. बिल्कुल जी, वादा तो हम करते हैं कि फिर वापस आएंगे एक और सुनहरे पल के साथ. जी हाँ, ऑन रेडियो मॉरिशस. शुभ रात्रि, शब बखैर और अपना ख्याल रखना.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघो बा ओ धोंडी बा, आई का ओए जर्नल सिंह, ओए जर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।

बेटी घरे का भाई हो भाई भेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: हो गया।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ किले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्ही से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई।